ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। कच्ची पुलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक

0: बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना का आरंभ करते हैं मातृभूमि को अर्पित इस श्रद्धा सुमन के साथ। कदम बढ़ाओ आओ राही, बनो देश के वीर सिपाही, कभी न पीछे हटना चाहे, हो पथ में तूफान, जय जय हिंदुस्तान। सबका साथ निभाना सीखो, जितने धर्म और भाषाएं, सबका हो सम्मान, उठो तुम्हारे हाथों होगा भारत का उत्थान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान।

अवधूत अर्थात वह महान योगी जिसने संसार के मोहमाया अहंकार और बंधनों का त्याग कर दिया हो। अवधूत यानी भगवान शिव, वो कैलाशवासी जो विरक्त और समस्त जगत के स्वामी हैं। आइए सुनते हैं।

आशीर्वाद मिलता है। और माँ का अटल छत्र वो अटल छाया है जो हर संकट और दुख में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भक्त जब जब सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ उसकी झोली खुशियों, विश्वास और अपनी असीम कृपा से भर देती है।

नन्हे कान्हा की पगों में बंधी पैजनों की मधुर रुंझुन पूरे गोकुल को आनंदित कर देती है। उनकी भोली मुस्कान और चंचल अदाएं हर हृदय को भक्ति से भर देती हैं। तो आइए बाल गोपाल के इसी मनमोहक स्वरूप का रस इस सुंदर भजन में लेते हैं।

जिस प्रकार ख्याल ठुमरी ध्रुपद तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं। चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आपने सुने कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की आवाजों में भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत चिंतन, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
1: यदि आज हम वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो यह कटु सत्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आज संपूर्ण विश्व अशांति की ज्वाला से दग्ध है। कहीं आतंक और विद्रोह की आग सुलग रही है तो कहीं शोषण का दमन चक्र चल रहा है। शांति और सह अस्तित्व की भावना न जाने कहां तिरोहित हो गई है। यदि हम औरों की बात न करते हुए केवल अपने देश की स्थिति पर ही विचार करें तो आश्चर्य होता है कि क्या यह वही देश है जहां राम, कृष्ण, महावीर और गौतम बुद्ध जैसी पुण्यात्माओं ने जन्म लिया था। परस्परोग्रह जीवानाम की भावना से विश्व को अभिभूत करने वाला यह देश आज न जाने किस चक्रव्यूह में फंस गया है कि आज हमें अपने चारों ओर हिंसा, अमैत्री, अनाचार और कटुता का बोलबाला दिखाई देता है। सत्य, अहिंसा, दया और करुणा की कल कल बहती सरिताएं न जाने कहां विलुप्त हो गई हैं। धर्म और दर्शन के सिद्धांत न जाने किन किताबों के पन्नों में दफन हो गए हैं। निश्चय ही कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम इस गड़बड़ को खोजें और उसके कारणों का विश्लेषण करें और तदनुसार अपने आचार विचार और कार्य व्यवहार को परिमार्जित करें। और इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने गौरवशाली अतीत का मंथन करें, क्योंकि इसी अतीत में छिपा है शांति और सह अस्तित्व का बीज मंत्र। आज विश्व में संघर्ष की जो स्थिति है और जिसके कारण विश्व शांति बार बार खतरों से दो चार होती है, उसका मूल कारण है सह अस्तित्व के सिद्धांत की अवहेलना। जब जब किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र में मैं

0: विवेक का भाव जागृत होता है, तब तब अशांति की नाक अपने फन उठाकर मानवीय जीवन मूल्यों को दंश देने लगते हैं और इन्हीं दंशों से घबराकर शांति के कपोत उड़न छू हो जाते हैं। यदि हम तटस्थ भाव से प्रकृति के नैसर्गिक सिद्धांत पर विचार करें तो हम पाते हैं कि प्रकृति के समस्त जीव शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। सबका जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा है। यदि हम अकारण किसी जीव को खतरा पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम अंततो गत्वा समग्र मानव जाति को भोगना पड़ता है। किसी एक की भूल का प्रायश्चित सबको ही करना पड़ता है। जब जब इस भूभाग पर दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचला गया है, तब तब शांति और अहिंसा के कदम लड़खड़ा कर गिर पड़े। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इस ऐतिहासिक सत्य के प्रत्यक्ष दर्शी गवाह हैं। मानवीयता के नाम पर कलंक सिद्ध हो चुकी इन घटनाओं से सबक लेकर ही मानव एक बार फिर शांति और सह अस्तित्व की खोज में निकल पड़ा और इसी खोज ने जन्म दिया संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को। परंतु आज एक बार फिर कुछ स्वयंभू राष्ट्रों के अहम के कारण शांति का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जहां स्वार्थपरक अहम होता है वहां अशांति और हिंसा की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार हो जाती है और इसी अनुकूल पृष्ठभूमि पर मानवीय मूल्यों के दमन की फसल लहलहाने लगती है। यही कारण है कि विश्व के सभी धर्मों ने दया, करुणा, मैत्री और सद्भाव जैसे मानवीय गुणों की वृद्धि की कामना की है, क्योंकि इन सद्गुणों के अभाव में सृष्टि की सुरक्षा असंभव है। अतः विश्व शांति के लिए जरूरी है अहिंसक समाज की स्थापना और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। इस शुरुआत के लिए हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को आत्मसात करना होगा और तभी हम अपनी भावी संतति को प्रेम और सौहार्द से युक्त खुशहाल पृथ्वी का नेतृत्व सौंप सकेंगे। परंतु यह सब तभी संभव है जब हम अपनी पुरातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतार कर इस भावना की सुरभि को जन जन के मन प्राण तक पहुंचाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाव भवेत्।
1: प्रकाश किरण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः विषय पर चिंतन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा वार्ता गर्मियों हेतु चारा फसलें। वार्ताकार होंगे डॉक्टर डी एस वर्मा। स्वास्थ्य चर्चा की जाएगी मधुमेह कारण लक्षण और उपचार विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह। कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा और समय रहेगा सुबह 7:10 का। सुबह 7:30 आसपास की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम आसपास प्रस्तुत किया जाएगा। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुनेंगे सुबह 9:25 पर, जिसमें आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। और एक बार फिर सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता सुना जा सकेगा सुबह 10:00। लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा आप सुन सकेंगे सुबह 9:15 पर। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:45 पर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे मंगल सिंह कुशवाहा और साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 10:30। आज सुनिएगा उस्ताद शुजात हुसैन खान से सितार वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग अलहैया बिलावल। दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 सुना जा सकेगा सुबह 11।

बजे इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित समीक्षा। ब्रज लोकगीत सुने जा सकेंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में दिन में 12 बजे। कलाकार होंगे प्रेम कुमार शर्मा। नई फिल्मों से फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम नए तराने के अंतर्गत। हमारे नन्ही मुन्नी श्रोता अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंडल सुन सकेंगे 1:15 पर। आज बच्चे सुनेंगे चर्चा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का प्रथम दिन विषय पर। इसके अलावा रोचक जानकारी दी जाएगी मदर्स डे पर। कहानी सुन सकेंगे मुन्ना हाथी और बच्चों के मनोरंजन के लिए होगा बाल गीत। 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे सोनाली और रूप कुमार राठौर की गायी चंद गजलें।

आज के अतिथि। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 2:30 का। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत की जाएगी भेंट वार्ता सुरीति रघुनंदन से नीरज जैन की बातचीत पर आधारित। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 3:00। शाम 5:10 पर प्रस्तुत किया जाएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:30 सुनेगा चर्चा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन विषय पर। साथ ही खेल दुनिया के अंतर्गत मलखंब का महत्व विषय पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सुनेगा वार्ता आपसी संवाद में निहित है हर समस्या का हल। ग्रामीणलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:00 का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि विषय पर चर्चा। साथ ही अरविंद प्रताप सिंह से अनिंद्र सिंह की बातचीत देशी गाय बेहतर आय विषय पर। मजदूर मंडल कार्यक्रम में आज 6:30 आप सुन सकेंगे बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका विषय पर रीटा रॉय की वार्ता। और चर्चा का विषय रहेगा 1857 की महान क्रांति। विविधा क्रम के अंतर्गत आज 7:10 पर सुनिएगा वार्ता जे कृष्णमूर्ति का जीवन दर्शन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 7:30 और रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे गाने नए पुराने। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 और रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होगा। तो ये थी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की

भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण, इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहाँ राम के रूप में परम ब्रह्म और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

0: आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थी उत्तरा केलकर। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर DS वर्मा आपको जानकारी देंगे गर्मियों हेतु चारा फसलें विषय पर। आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों, गर्मियों में पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिसका दूध देने वाले पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए गर्मियों में चारा हेत प्रमुख रूप से ज्वार, लोबिया, मक्का व बाजरा फसलों को चारे के लिए बोया जाए। चारे हेत बहुकट ज्वार की ऐसी किस्मों को बोना चाहिए जिसमें HCN यानी जहर की मात्रा बहुत कम होती हो तथा जिन्हें चारे के लिए कई बार काटा जा सकता हो। इसकी प्रमुख किस्में MFHH3 व MFHH4, PSSG 111, MP चरी, पंत चरी व UP चरी नंबर 1 व UP चरी नंबर 2 उपयुक्त हैं। इन किस्मों की बुवाई आलू व सरसों से खाली खेतों में फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से मार्च तक करना लाभदायक रहता है। इसका 30 से 40 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। ज्वार को बोते समय 100 किलोग्राम DAP को एक हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बुवाई हमेशा कुंड से करना उचित रहता है। पहली सिंचाई

20-25 दिन बाद करें। बाकी की सिंचाई प्रत्येक कटाई के बाद अवश्य करें। अधिक गर्मी पड़ने पर सिंचाई का अंतर 10-15 दिन रखें। हर कटाई के बाद चारे हित फसल में 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर लगाते रहें। बहुकट वाली ज्वार में पहली कटाई 50-60 दिन बाद ही करनी चाहिए। इसके बाद हर 35 से 40 दिन बाद काटने योग्य हो जाती है। इस प्रकार इससे कुल 3 कटाइयां ली जा सकती हैं, जिससे लगभग 300 से 400 कुंटल हरा चारा एक हेक्टेयर से मिल जाता है। चारे के लिए दूसरी फसल है लोबिया। यह एक दाल वाली फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 20% रहती है, इसलिए अन्य चारों की अपेक्षा दुधारू व कार करने वाले पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पशुओं को इसकी भरपेट मात्रा खिलाई जाए तथा थोड़ा सा भूसा दिया जाए तो पशु बिना रातब खिलाए ही 5-6 लीटर दूध प्रतिदिन देता रहेगा। चारे हेतु लोबिया की कई महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे रशियन जॉइंट, UPC 5286, UPC 5287, FOS नंबर 1, लोबिया नंबर 10 व EC 4216। इन किस्मों की बुवाई मार्च से अप्रैल माह तक की जा सकती है। इसकी बुवाई के लिए 30-35 किलोग्राम बीज प्रयोग करना उचित रहता है। बुवाई हमेशा लाइनों में 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर 6-8 सेंटीमीटर लाइनों में गहराई पर करें। लोबिया को अन्य चारे वाली फसलों के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता है। मिलाकर बोने पर इसकी बीज की मात्रा 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। लोबिया में पहली सिंचाई बुवाई के 15 दिन बाद करनी चाहिए। मार्च में बोने पर कुल 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ढाई मास यानी फली आने के बाद फसल कटाई योग्य हो जाती है। दूसरी कटाई अच्छी व जल्दी लेने हेतु पहली कटाई को भूमि से 8-10 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें। इस प्रकार इससे लगभग 350 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर उपलब्ध हो जाता है। गर्मियों में चारे के रूप में मक्का की फसल को भी पशु बड़े स्वाद से खाते हैं। इसका चारा मुलायम होता है। इसमें पौष्टिकता सिल्क यानी सूत के आने पर अधिक होती है। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टॉल प्रजाति सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा संकर मक्का में प्रोटीना, गंगा 2, गंगा 5 व गंगा 7 तथा सकुल प्रजातियों में मक्का चारे में किसान और विजय एवं देसी मक्का में टाइप 41 की बुवाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर में प्रयोग करें। चारे हित बुवाई फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जाती है। बुवाई लाइनों में 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही करें। इसकी बुवाई के समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से चारे की भरपूर कटाई मिलती रहती है। इसके बाद 80 किलोग्राम यूरिया 30 दिन बाद व 80 किलोग्राम यूरिया सिल्क यानी सूत अवस्था पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर दें। सिंचाई व्यवस्था 8 से 10 दिन के अंतर पर करते रहें। इसकी चारे पहली कटाई 70 से 75 दिन बाद ही करें, क्योंकि इस अवस्था पर फसल में मादा मंजरियां निकल आती हैं। मक्का से हरे चारे की औसत उपज लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके अलावा चारे के लिए बहुकट बाजरा की फसल है, जिसको किसान आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा उगाते हैं। यह एक अधिक कल्ले फूटने वाली व शीघ्रता से बढ़ने वाली रोग निरोधक चारे की फसल है। इसको सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में बड़ी आसानी से बोकर अच्छा चारा ले सकते हैं। इसको लोबिया के साथ भी मिलाकर बोया जा सकता है। चारे हेत बहुकट बाजरे की कुछ संकर यानी हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे संकर चारा बाजरा नंबर 1 जो प्रो एग्रो कंपनी का है। इसके अलावा महिको या अन्य कंपनियों की किस्में बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चारे हेत बाजरा की बुवाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। बोते समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बाजरा से हरे चारे के रूप

0: में लगभग 4-5 कटाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। बाजरा की पहली कटाई लगभग 1.5 महीने बाद ही करें। इसके बाद की कटाई एक एक माह पर करते रहें। प्रत्येक कटाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें। चारे हेतु बाजरा की बुवाई फरवरी से लेकर अप्रैल के प्रथम पक्ष तक की जा सकती है। बाजरा को लोबिया फसल के साथ भी बो सकते हैं। बोते समय 2 लाइन बाजरा की, 1 लाइन लोबिया की बोएं। बाजरा से लगभग 300 से 400 कुंटल चारा प्रति हेक्टेयर आसानी से मिल जाता है। बहुकट चारे वाली फसलों में कटाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कटाई सदैव जमीन से 7 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करें, ताकि फुटाव वाली कलियां न कट पाएं और फुटाव जल्दी हुआ अच्छा हो जाए। इस तरह चारे की फसल उगाते समय इन बताई गई बातों को अमल में लाकर हमारा पशुपालक गर्मियों में हरा चारा उत्पादन करेंगे तो निश्चित ही पशुओं से दुग्ध उत्पादन उचित मिलता रहेगा और चारा का अच्छा उत्पादन हो सकेगा।
1: खेती की बातें इस विषय में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों हेतु चारा फसलें विषय पर डॉक्टर DS वर्मा द्वारा दी गई जानकारी। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था।

0: हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रता है वहां, राष्ट्रभाषा है जहां। हम सबका एक ही नारा, साफ स्वच्छ हो देश हमारा। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। अगर आप आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं तो पेड़ लगाइए और पृथ्वी को बचाइए। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वीं वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे सहभागं करिष्यति।

0: उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी

0: स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and VD Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul

मधुमेह एक जटिल रोग है। इसे शुगर की बीमारी या डायबिटीज भी कहा जाता है। यह एक जानलेवा मीठा जहर है जो एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो जिंदगी भर इससे निजात पाना मुश्किल है। आजकल यह रोग हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। मधुमेह आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मधुमेह हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय नामक ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाने अथवा बंद हो जाने के कारण होती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि आँखों, गुर्दों, हृदय, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। यदि सालों साल रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ रहे तो प्रत्येक अंग की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसे माइक्रोएंजियोपैथी कहा जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। इसमें रोगी को रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य रखने के लिए नियमित रूप से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। यह रोग प्राय किशोरावस्था से ही पाया जाता है, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। दूसरा टाइप 2 यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। लगभग 90% मधुमेह रोगी टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी हैं। इस प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। इसमें जेनेटिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह वयस्कों और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लेता है। तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भावस्था के दौरान होने वाली मधुमेह जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है। इस प्रकार की डायबिटीज में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से संबंधित जटिलताएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुपोषण जनित डायबिटीज में कुपोषण के कारण अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसके कारण कम उम्र में ही मधुमेह का खतरा बना रहता है। कई बार अन्य रोगों के कारण अग्नाशय प्रभावित हो जाता है, जिससे इंसुलिन का स्राव असामान्य हो जाता है और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह के रोगी को बार बार पेशाब आता है, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं। रोगी का मुंह खुश्क रहता है और ज़्यादा प्यास लगती है, भूख अधिक लगती है और

अधिक भोजन करने पर भी शरीर दुर्बल रहता है। शरीर में थकावट के साथ साथ मानसिक चिंतन और एकाग्रता में भी कमी आने लगती है। शरीर में निरंतर खुजली रहती है और सूजन भी आ जाती है। आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। रोगी को उत्सचाप की समस्या भी रहती है और कोई भी जख्म होने पर आसानी से बढ़ नहीं पाता। ये मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं। मधुमेह के प्रमुख कारणों में हमारी दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित खान पान, लंबे समय तक बैठकर काम करना, अधिक शर्करा वाली चीज़ों जैसे मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन करना, देर रात तक जागना और देरी से भोजन करना, अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करना, तले भुने पदार्थों का सेवन करना और मोटापा, ये मुख्य हैं। मधुमेह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसे अगर सही वक्त पर रोका ना जाए तो इसके परिणाम जानलेवा भी हो सकते हैं। इस बीमारी से होने वाली जटिलताओं की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से योगाभ्यास और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस रोग से ग्रसित रोगियों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ और इंसुलिन के इंजेक्शन समयानुसार लेते रहना चाहिए। कई बार बहुत से मरीज डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ थोड़ा आराम मिलने के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि रक्त में शुगर का लेवल बहुत समय तक बढ़ा रहता है तो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है और इसके गंभीर परिणाम मरीज को भुगतने पड़ते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है। इसकी सही समय पर रोकथाम ना हो पाए तो यह हाइपरटेंशन और थायराइड जैसी समस्या को जन्म दे देती है।

0: उजेद गर्म है।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंदपलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
4: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्वजनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर

0: और की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
1: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 3 दिवसीय और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
2: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर

पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में रोजाना की तरह अपने आसपास की सूचनाएं तो हम लेकर आए ही हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे सड़क सुरक्षा सप्ताह के विषय में, साथ ही मदर्स डे पर भी चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे आपको आपके मनोरंजन के लिए कुछ गीत। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत सूचनाओं के बजाय चर्चा से करते हैं। साथियों, कल्पना कीजिए एक परिवार अपने किसी प्रियजन के घर लौटने का इंतजार कर रहा हो, दरवाजे पर निगाहें टिकी हो, फोन बार बार देखा जा रहा हो, लेकिन तभी एक खबर आती है, एक सड़क दुर्घटना हो गई और पल भर में किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पिता या किसी का सपना हमेशा के लिए खो जाता है। दोस्तों, सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़े नहीं होती, वे टूटते हुए परिवार

0: की कहानियां होती हैं। और इसी गंभीर चिंता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 से 12 मई तक वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ताकि लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा सके। आज दुनिया भर में लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि इन दुर्घटनाओं में एक बड़ी संख्या युवाओं की होती है, जो राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, परिवार के पालनहार होते हैं। और अक्सर इन हादसों का कारण कोई बड़ी गलती नहीं, बल्कि एक छोटी सी लापरवाही होती है। तेज रफ्तार, मोबाइल फोन पर बात करना, बात करते हुए गाड़ी चलाना, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, या फिर ट्रैफिक के नियमों को हल्के में लेना, उनको ना मानना। हम अक्सर सोचते हैं बस 2 मिनट की बात है, इतनी सी दूरी में क्या हो जाएगा, लेकिन कई बार यही 2 मिनट, यही छोटी सी दूरी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे परिवार की। साथियों, सड़क पर वाहन चलाना केवल अपना वाहन संभालना नहीं है, बल्कि कई और जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी उठाना है, कई और जिंदगियों को संभालना है जो सड़क पर चल रहे हैं। आपकी असावधानी किसी बच्चे को उसके माँ बाप से बिछड़ा सकती है, और आपकी सावधानी किसी बच्चे को उसके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचा सकती है, किसी माता पिता को उसके बच्चे तक पहुंचा सकती है। आपका धैर्य किसी घर की खुशियां बचा सकता है। याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है, आपकी सुरक्षित वापसी किसी के चेहरे की मुस्कान है। इसलिए जब भी सड़क पर निकलें, धीमी और नियंत्रित गति रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, मोबाइल फोन से दूरी रखें, और पैदल यात्रियों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। आइए इस वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर हम केवल नियम न दोहराएं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपनी रोजमर्रा की आदतों में उतारें, क्योंकि सड़क पर सावधानी केवल कानून का पालन नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान है। सुरक्षित चलिए, सतर्क रहिए, और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी की भी रक्षा कीजिए।
1: ए भाई,

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: है और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार?

कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। चलते हैं कार्यक्रम के अगले चरण पर और देते हैं आपको सूचनाएं जानकारियां अपने आसपास की। यह है पहली खबर। आज भी होगी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद। डीएम के आदेश पर सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि कार्य दिवस की भांति रविवार को गेहूं खरीद का कार्य किया जाएगा। सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, किसानों को भी कोई दिक्कत न हो इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। सोलह मई को होगा संपूर्ण समाधान दिवस। जिले की 6 तहसीलों में 16 मई को संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसमें मंडलायुक्त और डीएम सहित अन्य अधिकारियों द्वारा शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। बैकुंठ देवी महाविद्यालय से छात्राएं कर सकती हैं बीएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जी हां, ये पाठ्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ है। इस नए पाठ्यक्रम में करियर की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहां महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की 1010 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैकुंठ देवी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि 1967 में महाविद्यालय की स्थापना हुई। महाविद्यालय में हॉस्टल के साथ साथ जिम और कैंटीन की भी व्यवस्था है। 2018 में नैक से बी ग्रेड भी मिल चुका है। केंद्रीय पुस्तकालय से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस संचालित हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले छात्राओं को डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना समर्थ पोर्टल पंजीकरण के कोई भी छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगी। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही इन छात्राओं की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी जिसमें छात्राओं का विस्तृत विवरण रहेगा। छात्रा देश में किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करें उनका एबीसी नंबर नहीं बदले।

समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद महाविद्यालय की साइट के माध्यम से छात्राएं प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। महाविद्यालय में कला, ललित कला, विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय एवं वाणिज्य संकाय के 19 पाठ्य विषयों में स्नातक स्तर पर तथा 11 पाठ्य विषयों में परास्नातक स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है।

अब डाकघर की देर रात तक सेवाएं मिल सकेंगी। नौकरी पेशा, व्यापारी, छात्र और जो दिनभर काम में व्यस्त रहते हैं, शाम को 5 बजे और उसके बाद फ्री होते हैं, ऐसे लोगों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्य करने में कठिनाइयां होती हैं। डाकघर ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए एमजी रोड स्थित जीएल एम्पोरियम में एक्सटेंशन काउंटर खोला है, जिस पर दोपहर 3 से रात्रि 11 बजे तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डाक सामग्री की बुकिंग करा सकेंगे। प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र है, जहां पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए डाक संबंधित बुकिंग की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस सेवा से वे लोग वंचित रह जाते हैं जो व्यापारी और नौकरी पेशा लोग हैं। अब ऐसे लोगों के लिए डीएम आवास के पास एमजी रोड पर जीएल एम्पोरियम में एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ किया गया है, जहां पर रात्रि 11 बजे तक बुकिंग की सेवा मिल सकेंगी। इसके अलावा आधार नामांकन के लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं। प्रधान डाकघर प्रतापपुरा आधार नामांकन के लिए कैंपों का आयोजन करेगा। विद्यालय, कार्यालय, सोसाइटी और आम लोग, जहां पर कम से कम 60 लोग हैं, वहां पर आधार नामांकन शिविर का आयोजन हो सकता है। इसके लिए प्रस्तावित तिथि से 5 दिन पहले एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8077305283। इस नंबर पर संपर्क करके आप आधार कार्ड के कैंप के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। ग्यारह और 18 तारीख को चलेंगी ऊना जयनगर एक्सप्रेस। ऊना जयनगर एक्सप्रेस का संचालन 11 मई और 18 मई को होगा। ये ट्रेन ईदगाह रेलवे स्टेशन से होकर चलेगी। इसमें 4 सामान्य श्रेणी, 6 स्लीपर एसी तृतीय श्रेणी की 5 और द्वितीय श्रेणी का 1 कोच शामिल हैं। दस लाख से अधिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और गैस रिफिलिंग को रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक और कदम उठाया है। 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्येक सिलेंडर में सब्सिडी नहीं मिलेगी। वर्तमान में हर माह प्रत्येक सिलेंडर में 12.5 रुपए की सब्सिडी मिलती है। शनिवार को तीनों ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक उपभोक्ता इंडेन के हैं। यदि आपको गैस से संबंधित कोई आपत्ति है तो आप टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, 1800-2333-555। एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-2333-555।

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को करें आवेदन। आगरा रेल मंडल के 22 स्टेशनों की 23 लोकेशन पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। पीआरओ ने बताया कि एजेंट अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से टिकट वितरण करेंगे। नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। इच्छुक अभ्यर्थी मंडल वाणिज्य कार्यालय आगरा से या उत्तर मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई की सुबह 11 बजे तक निर्धारित की गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09119 और 09120 यानी प्रताप नगर लाल कुआं प्रताप नगर सुपरफास्ट

से स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि ट्रेन प्रतापनगर से 3 मई से प्रत्येक रविवार को और लालकुआ से 4 मई से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। ट्रेन प्रतापनगर से रविवार शाम 5 बजे चलकर अगले दिन सुबह 6 बजे मथुरा जंक्शन और दोपहर 12:45 पर लालकुआ पहुंचेगी। ट्रेन लालकुआ से सोमवार दोपहर 3:50 पर चलकर रात 10:25 पर मथुरा जंक्शन और अगले दिन मंगलवार को सुबह 11:30 प्रतापनगर पहुंचेगी। कोटा रेलवे जंक्शन स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्य के चलते गाड़ी संख्या 132-38 और गाड़ी संख्या 132-40 कोटा पटना एक्सप्रेस कोटा के स्थान पर सोगरिया स्टेशन से चलेगी। आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि ट्रेन 16 अप्रैल से 12 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सोगरिया स्टेशन से रात्रि 10:40 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 13237 और 13239 पटना कोटा एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 11 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सोगरिया स्टेशन पर समाप्त होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वो यात्रा से पूर्व गाड़ी का समय पता कर लें। अप्रैल माह में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए कुल 54 रेलवे रियायत कार्ड ऑनलाइन जारी किए गए हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रेलवे रियायत कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। गोंडा बुलवार सेंक्शन के काम के चलते कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है। आखा गोरखपुर एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से चलेगी। गोंडा बुढ़वाल सेक्शन में काम के चलते कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई है। तो ये थी हमारे आसपास की खास खबरें और अब आपके मनोरंजन के लिए आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा गीत।

और साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसे शब्दों में बांधना शायद दुनिया का सबसे कठिन काम है। जी हाँ, वो रिश्ता है माँ का रिश्ता। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। ये दिन माँ के प्रेम, त्याग, ममता और समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। माँ जो खुद तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों की मुस्कान की दुआ करती है। माँ जो बिना कहे बच्चे के चेहरे की उदासी पढ़ लेती है। और माँ जो बच्चे के जीवन की पहली शिक्षक, पहली दोस्त और पहली सुरक्षा होती है। साथियों, कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ वो एहसास है जो हमारे रोने से पहले हमारी तकलीफ पहचान लेती है। जिस घर में माँ की हंसी गूंजती है, वहां जैसे खुशियों का आशीर्वाद अपने आप उतर आता है। और सच तो ये है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के सामने वो हमेशा एक छोटा सा बच्चा ही रहता है। मदर्स डे मनाने की शुरुआत शायद इसलिए हुई ताकि लोग अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त कर सकें, लेकिन सच कहें तो माँ के लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं होता। माँ तो वो छांव है जो जीवन भर धूप अपने ऊपर लेकर हमें ठंडक देती रहती है। साथियों, आज की तेज भागती दुनिया में हम अक्सर अपनी व्यस्तताओं में उलझ जाते हैं। कई बार माँ की छोटी छोटी बातों पर झुंझला भी जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस माँ ने हमारी एक हल्की सी तकलीफ पर पूरी रात जागकर गुजार दी, क्या उसे दिन में दो मीठे शब्द सुनने का हक नहीं? कभी कभी माँ को महंगे उपहार नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा अपनापन। एक बार प्यार से, माँ आप कैसी हैं, पूछ भर लेना, और ये उनके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। तो आइए, इस मातृ दिवस पर हम सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाने तक सीमित ना रहें, बल्कि अपनी माँ के साथ कुछ पल बैठें, उनका हाथ थामें, उनकी बातें सुनें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वो हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं। और साथियों, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी, माँ का प्रेम वो दौलत है जो हर इंसान को अमीर बना देती है। जिसके पास माँ का साया है, उसके जीवन में सबसे बड़ी नेमत है

0: अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 8 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांगकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगास्वामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगास्वामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगास्वामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगास्वामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

0: में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र हिंदू परंपरा से

0: शांति पाठ राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra Scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar

0: picked up as next CDS, Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, returns set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled, Giving Them Roots, the Indian Express mentions inspiring stories of motherhood, pointing motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के क्याम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के क्याम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीरशुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और इहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वजीर आजम HAL हवाई अड्डे पर बीजेपी के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम TVK के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की

0: हवाला दिया गया है जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नया फ्रेमवर्क चार लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों महकमों आईनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रा वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोजाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोजा उजरत 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मजीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानिए का एक जामी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकेंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरो स्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माय हाइड्रोकार्बन ईंधन जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है जिसका मकसद कार्बन के सिफर इखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर इखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाके नेल्सन आइलैंड का दौरा किया जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबेगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था मर्यादा। गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं जानवर फिल्म से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और गीत में आवाज है मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना जानवर फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना कारवा फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को तरन्नुम में ढाला था आर डी बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा है कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आन मिलो सजना इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कालीचरण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत इंद्रजीत का और संगीत कल्याण जी आनंद जीत का।

लता मंगेशकर के गाए कालीचरण फिल्म के इस गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से।

0: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
1: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
2: धन्यवाद ओम जी।
1: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
2: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं। और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दें।
1: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
2: हम लोगों ने 3 जनपदों में जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं

0: कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
0: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं, अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनकी भी गणना की जाती है और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप को यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पांस फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते। जाते हैं
1: जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है वो है कवरेज।

0: कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे, तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहां आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयंगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोगों के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेज हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा 2 स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वयंगणना अधिक से अधिक लोग करें क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाएं, तो स्वयंगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे, अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को

0: सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा।

मुकेश का गाया जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। रोशन के संगीत से सजा है कार्यक्रम का यह अगला गीत जिसको लिखा है नीरज ने। मोहम्मद रफी के गाए इस गीत को हमने लिया है नई उम्र की नई फसल फिल्म से।

नई उम्र की नई फसल फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का ये गीत। गीत के बोल अमर खुसरो के और संगीत लक्ष्मीकांत बहरीलाल का।

आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की पारंपरिक रचना, जिसको संगीत में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत में आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले की थी और फिल्म का नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस गीत के साथ ही आज का गीत मंजिशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मंगल सिंह कुशवाहा और साथी। आइए सुनते हैं आपके द्वारा प्रस्तुत ब्रज लोकगीत।

मंगल सिंह कुशवाहा और साथियों के गाए इस ब्रज लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

मंगल सिंह कुशवाहा और साथियों के गाए इस ब्रज लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार शानू की आवाज में।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। विनोद महेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत नीलेश मिश्रा की कलम से, संगीत अनु मलिक का, आवाज श्रेया घोषाल की और फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज।

सुरसरता कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं दुश्मन फिल्म से। गीत को गाया है कुमार सानू, लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

कुमार सानू और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना दुश्मन फिल्म में। कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है फर्ज। गीत समीर का है और संगीत उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

अलका याग्निक को भी आपने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म में। गीत समीर का था और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के साथ ही आज का सुर सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 10:30 हुए हैं। समय हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान। आप प्रस्तुत कर रहे हैं सितार पर बजाया राग अलहैया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शुजात हुसैन खान का राग अलहिया बिलावल में सितार वादन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन की 11 बजने को है, हमारा अगला अन्न प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में बौद्ध दर्शन की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया

0: की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया है कि एक बार फिर से हम बौद्ध दर्शन को समझें और इसकी समसामयिकता क्या है ये जानें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
1: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओज्जेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
0: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुंचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत साधुवाद।
0: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम आपसे।
3: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
0: जी।
3: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतोपजानाति स हेतु धम्मं। मतलब जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
0: जी,
3: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतुओं से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
0: जी।
3: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमि दुखं च दुख निरोधं च। भिक्षुओं, मैं केवल दो ही बात करता हूं, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था ये धम्मा हेतु पहुआ तेसंग हेतु तथागत हुआ
0: जी।
3: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे कारण पे आधारित है
0: जी।
3: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
0: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉरपोरेट को और कॉरपोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही

0: स्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉर्पोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
1: जिंदगी की भागदौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूं, बुद्ध की तरफ देखता हूं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
0: जी।
1: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है, अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा, तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है, लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है
0: जी। यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं जी। और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं
1: जी।
0: ये बातचीत जो है बहुत रोचक मोड़ पर है, और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर इस मोड़ पर आप कौन सा गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: मैं यह बताना चाहूंगा कि गाना है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तो मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। अंगुलीमाल फिल्म का गाना है, 1960 में आया था
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है।
2: जब दुख की घड़ी

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, बौद्ध अध्ययन विभाग से हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं सतीश कुमार जी। तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं, ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
1: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला
0: जी।
1: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
0: जी।
1: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
0: जी,
1: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
0: जी,
1: अगर आपके पास

0: बस एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा, और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए।
1: जी
0: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया तो
1: जी
0: वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना,
1: जी
0: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना, सचित्त परियोधपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना,
1: जी
0: सचित्त परियोधपनं, एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी
0: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी
0: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास। विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए,
1: जी
0: ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी।
1: जी
0: वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो,
1: जी
0: दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है।
1: जी
0: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है।
1: जी
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: जी वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
0: देखिए ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है।
1: जी
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है।
1: जी
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात।
1: जी
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है,
1: जी
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है,
1: जी
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं।
1: जी
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। हम तो सील का पालन करते हैं,

0: हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है, हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है,
1: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है,
0: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है। चूंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंती कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंती ये धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि ही ऐसी है
1: जी।
0: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है, इसीलिए हम पर पूरी दुनिया मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए,
1: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाया गया। परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय

0: मैं कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को, तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो
1: जी
0: मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में होते हैं और
1: जी
0: माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है। बट
1: जी
0: रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन,
1: जी
0: ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो,
1: यानी
0: क्योंकि
1: जो बातें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ
0: जी
1: ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं,
0: जी
1: कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें
0: जी
1: और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है
0: जी
1: ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें,
0: जी
1: सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं।
0: जी
1: जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते
0: जी
1: हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते
0: जी
1: हैं। कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म
1: जी
0: है ही नहीं।
1: जी
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है,
1: जी
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है।
1: जी
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना,
1: जी
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता,
1: जी
0: उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जब भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती हैं, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन
1: जी
0: मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है।
1: जी तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहां मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं,
1: जी, ये आपको पसंद है गाना?
0: जी ये बहुत अच्छा है।
1: जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है
0: जी।

0: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। चूंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संहितो। यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आपकी चर्चा में परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा है। मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो, राइट लाइवलीहुड। इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
1: जी।
0: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
1: जी।
0: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाएं मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
1: जी।
0: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं, जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
1: जी।
0: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
1: जी।
0: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
1: जी।
0: और नैतिक सील, समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
1: जी।
0: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
1: जी।
0: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
1: जी।
0: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणंग कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपनंग एतान बुद्धान शासनंग। इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी
1: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है, हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने, और अगर है भी रोजगार उनके पास तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि, और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको

0: प्रयास के लिए प्रेरित करेगी, असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
1: यहां भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
0: जी।
1: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
0: जी,
1: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
0: जी,
1: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
0: जी।
1: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपकू आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
0: जी।
1: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
0: जी,
1: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा बेरोजगारी और असंतुष्टि, संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण, हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
0: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
0: जी,
1: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, और अधिक पढ़ो
0: जी।
1: बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे, जब आप असंतुष्ट हैं आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले।

0: जाते हैं, उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे।
1: जी, गुड्डी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, और सच में ये हमारे मन को जो है वो बहुत ही बलशाली बना देता है। ये गाना सुनकर ही अंदर जो है वो भाव इस तरह का पैदा होता है। आपको सुना रही है गुड्डी फिल्म का गीत।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ में, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और
1: जी
0: या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जानें?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं,
0: जी
1: जो आपको रीचेबल हो, वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर
0: जी
1: इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध हैं। जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेंजी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्यास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद ब्रज लोकगीत। गायक कलाकार हैं प्रेम कुमार शर्मा।

माँ बाप का दुलार है बेटियां, भाई बहन का प्यार है बेटियां, जीवन की सृजनहार हैं बेटियां, ईश्वर का उपहार है बेटियां।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 12:30 होने को है। प्रस्तुत है नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम सुनाते हैं और आप सुनते हैं नए तराने।

कुमार का लिखा हुआ तराना अभी आपने सुना के सुर में। इस तराने को संगीतबद्ध किया था सिद्धार्थ सुहास ने और फिल्म का नाम था रामा रामा क्या है ड्रामा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में। बोल समीर के, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और फिल्म का नाम है चुप चुप के।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना तुलसी कुमार और के स्वर में। शब्दशा नीलेश मिश्रा की है, संगीत प्रीतम का दिया हुआ और फिल्म का नाम है रेडी।

रॉकी फिल्म का तराना अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और विनीत की आवाजों में, शब्दरचना समीर की थी, संगीत हिमेश रेशमिया का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना हर्षदीप कौर और सपना अवस्थी की आवाजों में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने और फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम तराना नंदिनी शीकर की आवाज में। शब्दशना पंछी जलुनवी की है, धुन बनाई है विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम है राउन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर दोपहर के 1 बजने को है। हमारा अगला अन्य प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा

मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6, लखनऊ 10, बेंगलुरु 4 और मुंबई 9 स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,000

0: 1,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions, and takes the country forward.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए. साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है.
0: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Kadagam or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member House. According to a Lok Bhavan press release, the governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदाम में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज को मजबूती मिलेगी. एक रिपोर्ट.
3: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है. इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है. इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए. समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार.
2: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है. पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे. वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा. वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है. दरियासना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है. तमिलनाडु में

0: तमिल का वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए दो रोजा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज इतवार है, जिसमें आज की झलकी का शीर्षक है सफाई के कमाल। आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का है और निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं आतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: अजी सुनते हो?
1: अरे ऊपर वाले ने मुझे
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:16 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंडल।

प्यारे बच्चों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल में मैं निकिता श्रीवास्तव आपको बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत नहीं थी बच्चों, बल्कि लाखों भारतीयों के सपनों, हिम्मत और देशभक्ति की शुरुआत थी। बहुत साल पहले हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करती थी और हम भारतीयों के साथ अन्याय करते थे। लोगों को अपने ही देश में आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपने देश को आज़ाद कराने की आग जलने लगी। फिर वह दिन आया जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। उस पहले दिन लोगों के मन में डर भी था, क्योंकि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अपने देश के लिए प्रेम और आज़ादी पाने की चाह डर से कहीं बड़ी थी। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। वीर सैनिक, किसान, महिलाएं और युवा सब एक साथ खड़े हो गए। हर कोई बस यही कह रहा था कि अब हम अपने भारत को आज़ाद कराकर ही रहेंगे। बच्चों, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने आराम, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपनी जान की भी चिंता नहीं की। उनके दिल में सिर्फ भारत माता के लिए प्यार था। कोई तलवार लेकर मैदान में उतरा, कोई लोगों को एकजुट करने लगा, तो कोई देशभक्ति के गीत गाकर सब में उत्साह भर रहा था। सोचो बच्चों, अगर वे लोग डर कर पीछे हट जाते तो शायद आज हम खुली हवा में आज़ादी से सांस नहीं ले पाते। इसलिए हमें हमेशा उनके बलिदान को याद रखना चाहिए। बच्चों, हिम्मत, एकता और सच्चाई से बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है, और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और मेहनत से पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आज के छोटे छोटे सपने देखने वाले बच्चे ही तो कल भारत का भविष्य बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारी जिंदगी में सबसे खास इंसान कौन होता है? वह होती है हमारी माँ। माँ वह होती है जो हमें बिना स्वार्थ के सबसे ज्यादा प्यार करती है। हम हंसते हैं तो माँ खुश होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले माँ ही हमें गले लगाती है। और आज है मदर्स डे, यानी माँ को थैंक यू कहने का खास दिन। वैसे तो माँ के लिए हर दिन खास होना चाहिए, क्योंकि माँ हर दिन हमारे लिए बहुत कुछ करती है। सुबह हमें प्यार से जगाती है, हमारा ध्यान रखती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है, हमारी चिंता करती है और हमें अच्छी बातें सिखाती है। ये सब माँ ही तो करती है। बच्चों, माँ सिर्फ देखभाल ही नहीं करती, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनाना भी सिखाती है। जब हम गिरते हैं तो माँ हमें उठना सिखाती है। जब हम डर जाते हैं ना, तो माँ हमारा साहस बन जाती है। माँ का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे प्यारा प्यार होता है। तो बच्चों, इस मदर्स डे पर हमें अपनी माँ को ये महसूस कराना चाहिए कि हम उनसे कितना सारा प्यार करते हैं। उनके लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाइए, उन्हें गले लगाइए, उनकी मदद कीजिए और दिल से थैंक यू माँ कहिए। यकीन मानो, आपकी छोटी छोटी मुस्कान भी ना माँ के चेहरे पर सबसे बड़ी खुशी ले आएगी, क्योंकि माँ सच में भगवान का सबसे सुंदर उपहार है। बच्चों, सुनते हैं इसी बात पर प्यारा सा माँ के ऊपर ये गीत।

0: समय है कहानी सुनने का। भाई दादी नानी की कहानियों को कौन भूल सकता है ना? तो सुनते हैं ये कहानी मुन्ना हाथी।
1: बच्चों ये कहानी है मुन्ना हाथी की। मुन्ना हाथी का कारोबार सारे जंगल में फैला था। सारे

0: पेड़ पौधों पर उसका एक छत्र अधिकार था। जहां भी उसका मन करता वहीं जाकर पेड़ों की डालें तोड़ता, पत्ते चबाता और पेड़ों को हिलाता। किसी की मजाल नहीं थी कि उसको रोक पाए। जंगल में शेर ही उसकी बराबरी का जानवर था, किंतु उसे पेड़ पौधों से क्या लेना देना, उसे तो जानवरों के मांस से मतलब था। मुन्ना खूब पत्ते खाता, घूमता और मौज मस्ती करता। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल के रास्ते से कारों का काफिला निकला। रंग बिरंगी कारें देखकर मुन्ना का भी मूड हो गया कि वह भी कार में घूमे। हॉर्न बजाकर लोगों को सड़क से दूर हटाए और सर से कट मारकर आगे निकल जाए। दौड़कर वह टिल्लू मल के शोरूम में जा पहुंचा और अपने मन की बात टिल्लू मल को बताई। टिल्लू मल से अच्छी सी कार दिखाने को कहा। टिल्लू मल का सर चकरा गया। अब हाथी के लायक कार वो कहां से लाए, इतना विशाल काय जानवर और इतनी छोटी कार। बोला, भैया तुम्हारे लायक कार कहां मिलेगी, इतनी बड़ी कार तो कोई कंपनी नहीं बनाती। परंतु मुन्ना हाथी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि अब तो मैं यहां से कार लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवानी पड़ेगी, टिल्लू मल ने हाथी को समझाना चाहा। हाथी ने कहा, तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है। अरे भाई, बहुत बड़ी कार बनेगी। तो मुन्ना हाथी ने कहा, तो बनने दो, इसमें तुम्हें क्या कष्ट है। जब कार चलेगी तो जंगल के बहुत से पेड़ काटने पड़ेंगे। हाथी ने कहा, क्यों क्यों काटने पड़ेंगे पेड़। तो टिल्लू मल ने कहा कि भाई, कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। क्या पेड़ काटना ठीक होगा अपने जरा से शौक के लिए, तुम जरा सोच कर मुझे बताओ। अरे टिल्लू मल जी, कार के लिए पेड़ काटना, अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल काटना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जंगल ही तो जीवन है। ऐसा कहकर हाथी जंगल वापस चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे हमारा जीवन है। पेड़ पौधे ही हमारे पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। इनसे ही हमें दैनिक जीवन की सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इन्हें हमें काटना नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण करना है।
1: मनोरंजन को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, आज मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, सड़क सुरक्षा की। संयुक्त राष्ट्र हर साल वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है ताकि दुनिया के सभी लोग सड़क पर सावधानी से चलना सीखें और दुर्घटनाओं से बच सकें। सोचो, अगर सड़क पर हर कोई जल्दबाजी करे, ट्रैफिक नियम ना माने, मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाए या बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के निकले तो क्या होगा? छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसीलिए सड़क पर समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमें हमेशा सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, लाल बत्ती पर रुकना और हरी बत्ती पर ही आगे बढ़ना चाहिए। बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा कवच की तरह है। बच्चे, याद रखो, तेज रफ्तार कुछ पल का मजा तो देती है, लेकिन सावधानी पूरी जिंदगी की खुशी देती है। हमें खुद भी नियम मानने चाहिए और अपने परिवार वालों को भी समझाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित सड़कें ही खुशहाल जीवन का रास्ता बनाती हैं। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि नियमों का पालन करेंगे, अपनी और दूसरों की जान सुरक्षित रखेंगे। अब बात करते हैं इस मौसम की, क्योंकि बच्चों, मौसम बहुत गर्म है। घर के अंदर पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर से घर ठंडा तो है, लेकिन घर के बाहर तेज गर्म हवाएं हैं। ये तेज गर्म हवाएं हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इन गर्म हवाएं यानी कि लू की चपेट में आने से शरीर को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब क्या है ना, क्या ही कर सकते हैं। आपको स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, खेलने भी जाना है, दोस्तों क्या भी तो जाना है भाई, तो कैसे बचें लू से। तो बच्चों, शरीर को जितना हो सके डिहाइड्रेट रखें, पानी खूब पिएं, खूब सारे मौसमी फल खाएं, जूस, शिकंजी, छाछ, नारियल पानी, शरबत पिएं। खेलते खेलते बच्चों खूब पसीना निकलता है, बस पानी की कमी शरीर को ना होने दें। और हाँ, कोशिश करें कि धूप में निकले ही नहीं, खतरनाक धूप से खुद को बचाएं। सूती कपड़े से मुंह ढककर, कैप लगाकर या पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर, जैसे चाहे धूप से बचें, लेकिन दिन में धूप में निकलना अवॉइड करें। बच्चों, चाट पकौड़ी की तो सबको तलब लगती ही है, लेकिन गर्मियों में दिन में चाट पकौड़ी की ठेल या बाहर का खाना ना खाएं।

ठीक तो है। ऐसा करेंगे तो धूप और लू दोनों से बचे रहेंगे। तो फिर चलते हैं, फिर करते हैं बातचीत आपसे आपके पसंदीदा कार्यक्रम बालमंडल में। अभी के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

जल है तो कल है, पानी कुदरत का अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना बहाएं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:45 होने को है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद गजलें। गायक कलाकार हैं सोनाली और रूप कुमार राठौर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं चंद गजलें। गायक कलाकार हैं सोनाली और रूप कुमार राठौर।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुनी चंद गजलें। गायक कलाकार थे सोनाली और रूप कुमार राठौर।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2 बजने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

0: शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा

0: host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended tied at 4-all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And in IPL Cricket, Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्वा सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी,

0: आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को

0: को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेरीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात

0: नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की अतिथि। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरीति रघुनंदन से नीरज जैन की बातचीत।
1: आज के अतिथि मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी को, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं और मॉरिशस में रहती हैं। यूं तो रहने वाली भारत की हैं और बल्कि आपके अपने शहर, हमारे अपने शहर आगरा की हैं। तो सुरीति जी, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, जो मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ आकर 30 वर्ष पुरानी जब पहली बार मैंने यहाँ काव्य पाठ किया था
1: जी,
2: वो यादें ताजा हो गई और सचमुच वो जो हमें उत्साह और उमंग, ऐसा लगा कि हम 30 वर्ष पुराने वाले हो गए हैं।
1: यानी कि आप आकाशवाणी आगरा से बहुत पहले से जुड़ी रही हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो आकाशवाणी में जाना ही अपने आप में ऐसा लगता था कि जैसे एक नई फिल्म किसी को मिल गई होती है, वो उत्साह होता
1: क्या
2: है।
1: बात है, क्या
2: तो
1: बात है,
2: वही
1: क्रेज होता था।
2: बिल्कुल एक क्रेज होता था
1: जी।
2: और वो अनुभूति फिर से लग रही है कि मैं 30 साल पुरानी वाली सुरीति ठाकुर हो गई।
1: अच्छा, सुरीति ठाकुर प्रिया
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको याद आ गया अपना।
1: जी जी जी जी। और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि आप हमारे युगवाणी कार्यक्रम में आती थी।
2: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें कभी कभी काव्य गोष्ठियां भी हुआ करती थी।
1: जी जी जी, जी
2: तो
1: जी।
2: कई बार मैं संचालन भी करती थी।
1: जी जी। तो यानी कि आपका लिखने पढ़ने का शौक, जो साहित्य का अभिरुचि

0: है वो आपकी तब से ही लगातार अब तक बनी हुई है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि निरंतरता बनी रहनी आवश्यक है, आप कुछ
0: ये
1: भी करिए लेकिन बीच में किसी भी तरह का गैप ना है, कोई
0: बिल्कुल
1: भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जब आप गैप लाते हैं या उस चीज को करना बंद कर देते हैं, आपकी गति फिर से आपको शून्य से शुरुआत करनी
0: बिल्कुल
1: पड़ती है,
0: बिल्कुल, यानी कि चलते रहना है बिना
1: चलते
0: रुके
1: रहना
0: बिना
1: है।
0: थके
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: थक जाएं तो थोड़ा आराम कर लें, सर
0: लेकिन
1: पीछे
0: चलना
1: करके
0: बंद नहीं
1: बंद
0: करना,
1: नहीं
0: बंद
1: करना।
0: नहीं करना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये अच्छी
1: थके
0: बात
1: और
0: है। और
1: बिल्कुल
0: ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप आगरा से, भारत से आप मॉरिशस में हैं और आपकी साहित्य यात्रा अब तक लगातार अनवरत जारी है। तो इस साहित्यिक यात्रा के इस सफर में आपने क्या-क्या सोपान तय किए हैं?
1: जी हाँ नीरज जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी और उन लोगों को भी बताना चाहूंगी जो ये सोचते हैं कि विदेश में रहकर हम लोग अपने देश को भूल जाते हैं,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों की जड़ें हैं, दरअसल
0: जी
1: जड़ें बहुत गहरी वाली जड़ें हैं,
0: निश्चित रूप से
1: और वो गहराई में अगर आपको कहूं कि आज भी मेरे सपनों में मेरा पुराना घर आता है,
0: क्या बात है,
1: मेरा शहर आता है,
0: बहुत खूब।
1: और मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं लेकिन मेरी आत्मा आगरा में है,
0: क्या बात है,
1: भारत
0: क्या
1: में
0: बात है,
1: और
0: बहुत
1: आगरा
0: खूब
1: में
0: बहुत
1: है।
0: खूब बहुत खूब। मेरे ख्याल में शायद घर की मिट्टी की यही खुशबू आपको बार बार
1: बिल्कुल
0: भारत की ओर खींच कर लाती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरी कई रचनाओं में आगरा की भी बात होती है, और
0: अच्छा,
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: बिल्कुल
0: चाहेंगे कि आप अपनी वो रचना जिसमें आपके आगरा की बात है वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी
1: हो गए मुंबई सरीखे, कविता का शीर्षक है
0: जी
1: मुंबई सरीखे। हो गए तुम मुंबई सरीखे,
0: हो गए तुम,
1: हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा सी,
0: क्या बात है।
1: रही मगर मैं तो आगरा सी, मुंबई की मस्ती थी तुम में, मुझ में नजाकत थी आगरा सी,
0: वाह।
1: तुम थे मुंबई से खिलंदड़े, मुझ में मोहब्बत थी आगरा सी, तुम में खुलेपन का धमाल था, सब कुछ दिलकश बेमिसाल था, करती तुम्हें सलाम फिजाएं, करती करती तुम्हें सलाम फिजाएं, ऐसा कुछ तुम में कमाल था, हो गए तुम मुंबई सरीखे, मगर मगर मैं तो रही आगरा
0: आगरा
1: सी,
0: की क्या बात है, क्या बात है।
1: पर कपड़ों की तरह ही तुमने रिश्ते बदले, भावों को उड़ा दिया जैसे उड़ जाता धुआं चुपचाप हवा में,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हो
0: बहुत
1: गए
0: खूब।
1: तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा
0: आगरा
1: सी,
0: की
1: मैं समेटती रही हमेशा, मैं सहेजती रही हमेशा, बांध बांध कर प्रेम का मांझा,
0: क्या बात
1: प्रेम
0: है।
1: का मांझा संबंधों वाली पतंग का, हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो
0: आगरा
1: आगरा
0: की
1: सी,
0: क्या बात है।
1: मुझको जिसने जोड़ के रखा, मुझको मुझको जिसने जोड़ के रखा, वो था एक लिबास कर्ज का, वो था एक लिबास कर्ज का, कर्ज तुम्हारे इश्क का था वह,
0: क्या बात है, क्या
1: कर्ज
0: बात है,
1: तुम्हारे इश्क का था वह, जिसने मुझे मोड़ के रखा,
0: बहुत खूब,
1: जिसने मुझे मोड़ के
0: मोड़ के रखा,
1: रखा, हो गए तुम मुंबई सरीखे, रही मगर मैं तो आगरा सी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आगरा की सुनीति रघुनंदन जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप आकाशवाणी आगरा के साथ में 30 वर्षों से जुड़ी हुई हैं, 30 वर्ष पुराना आपको वाकया याद आ गया, तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पर पूरी हुई है?
1: जी नीरज जी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म स्थान आगरा है,
0: जी जी जी जी
1: और जैसे कि मेरे माता पिता बताते हैं कि कैंटोनमेंट में वहाँ सदर के पास जो अस्पताल है
0: जी
1: वहाँ मेरा जन्म हुआ था, और वहीं शिक्षा दीक्षा पीएचडी तक शोध कार्य भी मैंने यहीं पर
0: अच्छा,
1: किया, विषय वही था गीत, वीरेंद्र मिश्र के काव्य में युगीन संदर्भ,
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है।
1: खुद भी लिखा करती थी,
0: हाँ
1: काव्य गोष्ठियों में जाना संस्कार भारती से शुरू हुआ, और वो संस्कार भारती की गोष्ठियों से चलते चलते कवि सम्मेलन, मुशायरे,
0: तो वो जो सफर शुरू हुआ वो अभी तक अनवरत जारी है।
1: बिल्कुल रुकना नहीं
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: रुकना नहीं है हार के।
0: तो आपका जो शोध कार्य है, जो आपने बताया कि आपका जो वीरेंद्र मिश्र जी के ऊपर जो कार्य
1: जी
0: था, तो
1: जी
0: किसके निर्देशन में आपकी पीएचडी हुई?
1: बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में डॉक्टर नीलम भट्टनागर जी के
0: क्या
1: निर्देशन
0: बात है, क्या
1: में,
0: बात है, वो भी निश्चित रूप से बहुत ही विदुषी हैं वो।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे कहते हुए आज इस मंच से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरे जीवन की हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है, उनकी आशावादिता, और जब हम कई बार सोचते थे कि अब कैसे होगा,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: परिस्थितियां कई बार जीवन में आपको इतना उलझा देती हैं कि आपको समझ नहीं आता शोध कार्य करते करते कि छोड़ दें बीच में,
0: अचानक से लगते लगने
1: लगता है
0: लगता
1: थक
0: है कि
1: जाते हैं।
0: आखिर
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: होगा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: और वीरेंद्र मिश्र पर काम बहुत उस वक्त कम था, अभी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितना हो चुका है
0: जी
1: यहाँ पर, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने 2.25 साल में अपना शोध कार्य कर लिया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। जबकि हिंदी जैसे विषय में इतनी जल्दी शोध कार्य पूरा कर लेना अपने आप में अद्भुत बात है।
1: जी,
0: जी
1: क्योंकि मैं खुद लिखा करती थी तो

0: वीरेंद्र मिश्री के काव्य की, उनके गीतों की हर पंक्ति को मैंने जिया। मैंने सचमुच, जैसे कहते हैं कि उसको बिल्कुल डूब कर मैंने
1: तो निश्चित रूप से आपको वीरेंद्र मिश्र जी के जो रचनाएं हैं कंठस्थ होंगी।
0: हाँ, काफी अरसा बीत गया है, लगभग 2000 में किया था,
1: जी
0: डिग्री
1: जी
0: मिल
1: जी जी
0: चुकी है।
1: जी जी
0: लेकिन उनकी जो रचनाएं थी बहुत ज्यादा एकदम याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यथार्थवादी गीत हैं। और कई गीत तो ऐसे हैं कि मेरी दुनिया भर के सागर, मेरे दर्द में दुनिया भर के सागर, कुछ इस तरह की
1: जी जी
0: पंक्ति,
1: जी
0: यथार्थवादी रचनाएं
1: जी
0: सारे के सारे गीत।
1: तो आपके लेखन में किसका प्रभाव पड़ा है? आपके आप किस तरह का लिखती हैं?
0: मैंने कहानियां भी लिखी हैं,
1: जी
0: लेकिन मैं यथार्थवादी हूँ।
1: अच्छा।
0: कल्पनाओं से मुझे परहेज है,
1: जी
0: क्योंकि कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं का अगर आप पूरा नहीं कर पाते
1: तो कष्ट
0: तो
1: होता है,
0: कष्ट होता है।
1: पीड़ा
0: आपको
1: होती है।
0: यथार्थवादी रहना
1: जी
0: है,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि जीवन है तो समस्या है, लेकिन हर समस्या
1: का
0: का
1: समाधान है
0: समाधान
1: और वो समाधान भी हमें ही खोजना है।
0: हमें खोजना
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ
0: जिसे एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि आत्म प्रेम,
1: जी
0: जिस पर मेरी रचनाएं भी हैं, और कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग खुश नहीं है, लोग क्योंकि खुद से खुश नहीं है। आप कहते लोगों के चेहरे से मुस्कान चली गई है कि वो खुद से खुश नहीं है, वो
1: नहीं, अगर
0: भटके
1: आप
0: हुए हैं।
1: अगर व्यक्ति अपने आप से खुश होगा कोई दिक्कत नहीं
0: बिल्कुल
1: होगी।
0: नीरज जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ
1: जी
0: कि जो चीज आपके पास होगी वही ना बांटेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर
1: जी
0: आप
1: हाँ
0: खुद से खुश नहीं हैं तो आप खुशियां कैसे बांटेंगे?
1: क्या बात
0: तो सबसे पहले तो आपको ये कहिए कि मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ,
1: कि खुश रहिए।
0: जीवन में एक शौक जरूर पालिए, सकारात्मक शौक। वो आपको ऑक्सीजन देगा, जीवन जीने की एक कला सिखाएगा। कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन अपने शौक के लिए समय निकालें।
1: हाँ शौक वो कोई भी हो सकता है, लिखना
0: बिल्कुल
1: पढ़ना
0: बिल्कुल, लिखना
1: म्यूजिक
0: पढ़ना,
1: खेलना या कुछ भी
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है।
0: अगर आप नहीं लिखते, आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं,
1: जी हाँ
0: लोगों
1: बिल्कुल
0: की जीवनियां पढ़ सकते हैं, जिससे आत्म प्रेरित होना बहुत अनिवार्य है।
1: सही बात है
0: आप
1: सही बात
0: हर
1: है।
0: वक्त नहीं सोच सकते कि आज आप उदास हैं, आपने 10 मित्रों को फोन किया, हो सकता है दुर्भाग्यवश 10 के 10 मित्र ही व्यस्त हों।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो आपको आत्म प्रेरित होना है, सीखना है, ये अभ्यास द्वारा ही आता है।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपका दुख कोई इस तरह से नहीं बांट सकता है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: आपको, आप अपने लिए तो अभी हमेशा उपलब्ध रहेंगे ही,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस चीज
1: बिल्कुल।
0: को आपको जीवन में उतारना
1: तो
0: है।
1: आपने ये चीज अपनी कविताओं में भी आपने लिखी है।
0: बच्चों को लेकर मेरी अभी कल ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6 वर्षों बाद मैं भारत आई हूँ, और अपने भारत के लिए 4 पुस्तकों की सौगात अपनी तरफ
1: क्या
0: से
1: बात है, बहुत
0: छोटी सी
1: खूब,
0: भेंट लेके आई
1: बहुत
0: हूँ,
1: सुंदर बहुत
0: और
1: सुंदर
0: मुझे बहुत खुशी होगी उन शीर्षक जो है पुस्तकों के वो बताते हुए।
1: बिल्कुल
0: एक बच्चों के लिए है मन का राजा,
1: जी
0: उसमें से मैं एक एक चर्चा करूंगी, और छोट छोटी एक एक कुछ कुछ कविताएं आपके लिए जरूर
1: हाँ
0: मैं
1: स्वागत
0: पढ़ना
1: है आपका
0: चाहूंगी।
1: स्वागत।
0: मत टालो यूं अपने हर काम को, सुबह करोगे या करोगे शाम को,
1: सुबह करोगे
0: सुबह करोगे या करोगे शाम
1: शाम
0: को,
1: को।
0: कल कभी नहीं आता जान लो, कामों का बन जाएगा एक पहाड़, कामों का बन जाएगा एक पहाड़, उलझनों का उग जाएगा एक झाड़,
1: क्या बात क्या बात।
0: उलझनों का उग जाएगा एक झाड़, एक काम लो और तुरंत ही पूरा करो, अनुशासित हो सफलता के झंडे गाड़।
1: बहुत
0: इसी में
1: सुंदर
0: से
1: बहुत
0: एक
1: सुंदर बहुत
0: रचना मैं
1: सुंदर
0: पढ़ना चाहती हूँ, मौलिकता।
1: जी।
0: कला कोई भी सीखो, मजबूत रखो उसका आधार।
1: कला कोई भी सीखो
0: कला कोई भी सीखो, मजबूत रखो उसका आधार, मौलिकता से प्रेम करोगे तो प्रतिभा का होगा प्रचार, क्षमताओं का सदुपयोग करो, अपने काम से करो प्यार,
1: बहुत अच्छी बात
0: करो करो अवश्य ही आत्मविश्लेषण, और कर लो कमी स्वीकार, और कर लो कमी
1: कमी स्वीकार
0: स्वीकार, दिशा निर्देशन भी लो अवश्य,
1: जी
0: दिशा निर्देशन भी लो अवश्य, रुचि के क्षेत्र चुनना है अधिकार,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: रुचि के क्षेत्र चुनना है अधिकार।
1: ये बहुत अच्छी बात कि अगर हम अपना जो विश्लेषण अपने आप करें तो अपनी कमियों को हम जान पाएंगे और
0: बिल्कुल
1: उन कमियों को जानकर अगर हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हम अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते जबकि ये अच्छी बात नहीं है।
0: बिल्कुल
1: सुनीता जी, ये तो कविताओं की बात चली रही है, हम लोग कविताएं और भी सुनेंगे आपसे,
0: जी
1: लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि आपका हिंदुस्तान से मॉरिशस जाना कैसे हुआ?
0: जी ये कहिए कि प्रारब्ध में निश्चित होता है, जो प्रारब्ध कह
1: जी जी
0: लीजिए,
1: जी जी जी जी
0: 2004 में आरएआई की तरफ से मेरा चयन हुआ था। आगरा की संस्था है, सभी जानते हैं आरएआई, रिस्पेक्ट एज
1: जी
0: इंटरनेशनल,
1: जी जी जी
0: उसकी तरफ से मेरा चयन हुआ था लेखिका के रूप में।
1: अच्छा
0: हाँ जी, मैंने हमारे वृजन हमारी शक्ति लघु कथा की पुस्तक लिखी थी, और उसका विमोचन होना था समाज कल्याण मंत्रालय मॉरिशस में।
1: अच्छा
0: तो इस प्रतिनिधि मंडल की मैं सदस्य थी, और उस वक्त पूरे

0: भारत से अलग विभिन्न विभिन्न राज्यों से सदस्य थे, वहां मेरे पुस्तक का विमोचन हुआ, हमारे वृजन हमारी शक्ति।
1: जी
0: और मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि काफी समय मैंने वृद्धाश्रम में रही, बातचीत की, यथार्थवादी कहानियां हैं उसमें।
1: जी
0: बस यहीं से शुरुआत हुई और मेरा लिखा था वहां पर। 6 दिन के लिए हम लोग गए थे, वहीं समाज कल्याण अधिकारी थे उसी मंत्रालय में, श्री धर्मवीर रघुनंदन जी। और इत्तेफाक कहिए, ये मेरी किस्मत थी, मुझे विमोचन पुस्तक का होना था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त ने क्या मेरे लिए निश्चित किया हुआ है। तो विवाह प्रस्ताव आया उनकी
1: अच्छा,
0: तरफ से जी,
1: क्या बात है।
0: और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे माता पिता काफी स्वतंत्र विचारों के थे,
1: जी
0: तो उन्होंने स्वीकृति दी। 2005 में मेरे विवाह हो गया, 3 महीने के
1: अच्छा,
0: अंदर ही
1: क्या बात
0: जी।
1: है। यानी कि 2004 से जो शुरुआत हुई
0: जी जी
1: तो वो मतलब वो फलीभूत हो गई।
0: बिल्कुल। अक्टूबर में
1: जी
0: पहली बार मैं गई थी,
1: जी
0: उसके बाद 3 फरवरी को मेरा विवाह हो गया,
1: क्या
0: तीन
1: बात
0: फरवरी
1: है।
0: दो
1: तो
0: हजार
1: यानी कि फिर
0: पांच में
1: आप हिंदुस्तान से मॉरिशस की हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल कही है कि दोनों ही नहीं, दोनों ही मेरे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: ये बहुत
0: ये
1: अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी
0: बिल्कुल,
1: बात है, बहुत बढ़िया।
0: हिंदुस्तान भी मेरा है, मॉरिशस भी मेरा है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या
0: हिंदुस्तान
1: बात है।
0: मेरा मायका है और मॉरिशस मेरा ससुराल है, तो मेरे
1: जी
0: लिए तो दोनों ही अपने हैं,
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: दोनों से मुझे उतना बराबर का प्यार है।
1: अच्छा, मॉरिशस में आप रह रही हैं, तो मॉरिशस में हिंदी कविता की या हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है, क्या आप महसूस करती हैं?
0: जी, यहाँ जो है लोगों पर प्रभाव है हिंदी का। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बॉलीवुड, मुंबई की फिल्में काफी लोग पसंद करते हैं, और दूरदर्शन पे हमारे जो मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है
1: जी
0: उस पर भी हिंदी के कार्यक्रम आते हैं, आकाशवाणी पर आते हैं, लोग बहुत सुनते हैं। आकाशवाणी से मुझे एक बात जरूर जोड़ना चाहती हूँ, हर घर की रसोई में एक ट्रांजिस्टर आज भी है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, रियली।
0: मैं भी संयुक्त परिवार में रहती हूँ, सुबह उठते ही पहला जो होती है ट्रांजिस्टर ऑन होता है, कार्यक्रम सुबह से ही, भजन और सुबह से ही शुरुआत हो जाते हैं हिंदी के कार्यक्रम।
1: क्या
0: वो
1: बात,
0: फिक्स है, उसको हम बदलते ही नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी का ही सुनना होता है,
1: मतलब एक जीवन का एक अंग हो गया
0: अंग
1: है
0: है
1: वो।
0: हर एक।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हर मॉरिशन के रसोई में ट्रांजिस्टर है, उठते ही पहला काम रेडियो ऑन होता है, भजन आते हैं, कार्यक्रम आते हैं।
1: बहुत
0: आज
1: खूब,
0: भी 20 वर्षों बाद भी मुझे अपने घर के, ये प्रथा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि
1: क्या
0: सुबह उठते ही भजन और ये सुनने को मिलते हैं,
1: बात है,
0: तो
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: हिंदी की है। और आज विश्व हिंदी सचिवालय है जो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
1: जी जी जी
0: प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाती हैं कक्षाएं हिंदी की, और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाते हैं।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: वहां
0: जी
1: जो लोकल लैंग्वेज है या बोलचाल की भाषा है और जो कामकाज की भाषा है, तो वो कौन सी भाषाएं हैं, और उसके बाद हिंदी वहां पर किस तरह से प्रयोग करते हैं?
0: जो स्थानीय भाषा है वो क्रियोल है।
1: जी
0: क्रियोल को कहते हैं कि जैसे फ्रेंच का बिगड़ा हुआ रूप, और स्थानीय तौर पर तो लोग क्रियोल में ही बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ फ्रेंच भी है, फ्रेंच में और अंग्रेजी में लोग काम करते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: जो
0: हाँ,
1: सरकारी कामकाज की भाषा
0: सरकारी
1: है।
0: कामकाज,
1: अच्छा
0: और हिंदी की भी है, हिंदी लोग पसंद करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो विदेशी हैं, जर्मनी के हैं या फ्रेंच लोग हैं और रशियन लोग हैं जिन्होंने हिंदी सीखी, और आज उनके कईयों के तो यूट्यूब चैनल हिंदी में शुरू कर दिए हैं उन्होंने।
1: बहुत खूब, ये बहुत
0: और
1: सुंदर बात, अच्छी बात
0: जी
1: है ये।
0: बिल्कुल, एक मेरी छात्रा है, उन्होंने मुझे ये बात कही कि हम आपके साथ सिर्फ हिंदी ही नहीं भारतीय संस्कृति को भी सीख रहे हैं।
1: ये तो बहुत, मतलब एक गर्व की अनुभूति
0: गर्व की
1: होती है
0: अनुभूति
1: निश्चित
0: है
1: रूप से।
0: बिल्कुल,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: उनको लगता है कि जो मैं भारतीय संस्कृति के बारे में उनसे कहूंगी तो उसमें कहीं भी उन्हें संदेह नहीं होगा।
1: जी जी जी
0: तो ये
1: जी
0: बहुत अच्छी अनुभूति है कि विदेशी लोगों को मैं मिलवा रही हूँ, हिंदी से
1: भारतीय
0: मिलवा रही हूँ,
1: संस्कृति से आप रूबरू करवा रही हैं,
0: रूबरू
1: उनको
0: करवा
1: परिचित
0: रही हूँ।
1: करवा रही
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो
1: हैं।
0: ऐसा है कि वो रामायण और महाभारत मेरे सामने लाते हैं, रोमन में होती है, तो
1: जी
0: कहते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करो हमारे
1: अच्छा
0: लिए, तो और हम जानना चाहते हैं, उनका ये सपना है कि वो भारत जाए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो निश्चित रूप से आप उनको प्रेरित करती हैं भारत आने के लिए, भारत दर्शन के लिए
0: जी
1: प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो यानी कि एक तरह से आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर का काम भी करती हैं
0: मुझे मुझे
1: वहां।
0: बहुत ही खुशी है इस बात की कि इसी साल हम लोगों ने अप्रैल में 2023 में ही एक दर्शन कार्यक्रम किया था,
1: जी
0: जिसमें भारत के सभी राज्यों पर 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ था।
1: अच्छा
0: मैंने हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट किया था,
1: जी
0: और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि यहाँ के सरकारों ने बहुत सहयोग किया, हरियाणा सरकार ने, उसमें 1 घंटे का हमने कार्यक्रम किया, हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया।
1: क्या बात है,
0: और मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने कहा कि अरे हरियाणा, हम तो अगली बार तो हम हरियाणा जाएंगे, और क्योंकि सभी को
1: अच्छा
0: अलग अलग, पूरा भारत मेरा है,
1: जी
0: तो चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां के लिए भी मुझे मिलेगा मैं तो दिल से तैयार हूँ।

0: बिल्कुल
1: भारत भूमि से एक इशारा होगा और हम तैयार हैं भारतीय संस्कृति
0: निश्चित
1: के
0: रूप से
1: लिए।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मिट्टी से, अपने वतन से इतना प्यार करती हैं, और करना भी चाहिए, हर
1: बिल्कुल
0: देशवासी को करना चाहिए, ये हमारी
1: बिल्कुल।
0: मिट्टी का कर्ज है।
1: और नीरज जी, एक बात है कि जो मैं लेकर गई थी
0: जी
1: वो ही दूंगी मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: मैं
0: बिल्कुल
1: यहाँ से लेकर गई थी, जो संस्कृति को लेकर गई
0: जी
1: थी
0: हाँ
1: अपनी माटी से, खास तौर पे मैं कहूंगी कि जो भी मैं कर पा रही हूँ आगरा की बदौलत, और आगरा मेरी रगों में दौड़ता है। अगर मैं ये कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज भी मेरे सपनों में आगरा आता है, आगरा के
0: आना ही
1: मुझे।
0: चाहिए, ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्मभूमि है, ये आपने यहाँ पर अपने जीवन के बहुत सारे, एक जो स्वर्णिम काल है वो आपने बचपन का बिताया है
1: बिल्कुल
0: यहाँ
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: अपने,
1: हैं।
0: और यहीं से आपने शिक्षा दीक्षा ली है। अच्छा, जिससे आप, मैं बात कर रही थी कि जो आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, तो आप अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं वहां पर।
1: जी हाँ, मैं 12 वर्षों तक सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाया है,
0: जी
1: और सायंकालीन कक्षाएं होती हैं वहाँ, अभी भी पढ़ाती हूँ मैं
0: जी
1: आर्य समाज की। और वहाँ हर वर्ग का, यानी कि आयु का कोई बंधन नहीं है।
0: अच्छा
1: और ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ समझते हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन वो बोलना सीखना चाहते हैं
0: अच्छा
1: 60 वर्ष के। और एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, वहां लोगों में आयु को लेकर कोई निराशा नहीं है।
0: जी
1: 60 साल के, 65 साल
0: किसी
1: के,
0: भी
1: उनको
0: उम्र, किसी भी
1: सीखना
0: उम्र
1: है
0: में
1: जी, उम्र को
0: सीखने में
1: बंधन
0: दिक्कत
1: नहीं।
0: नहीं है। जी
1: ना
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: कोई
1: भी नहीं,
0: बंधन नहीं है उम्र
1: बिल्कुल
0: का।
1: उम्र का बंधन नहीं है। मेरे
0: जी
1: पास 60 साल के 70 साल की महिलाएं, पुरुष आते हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा जो आपने बताया कि आप रामायण महाभारत या जो हमारे जो भी संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देती हैं, तो वहां इन सब चीजों के बारे में लोगों में क्या राय है, क्या सोचते हैं वो लोग।
1: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ रामायण सेंटर है,
0: जी
1: रामायण केंद्र है मॉरिशस
0: जी
1: में,
0: जी जी जी
1: जहाँ पे विनु अरुण जी ने काफी काम, विनु अरुण जी और राजेंद्र अरुण जी पंडित, वो तो अब स्वर्गीय हो गए हैं,
0: जी
1: और बहुत काम किया है। और रामायण सेंटर की ओर से इतना काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, कि लोगों को वहाँ रामायण गायन की चौपाइयाँ ये सब सिखाते हैं, शिक्षण दिया जाता है,
0: अच्छा,
1: और बच्चे बहुत सुंदर तरीके से पाठ करते हैं,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: कंठस्थ करते
0: यानी
1: हैं।
0: कि अगर हम मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कह सकते हैं
1: बिल्कुल, एक जैसा
0: या
1: कि
0: लघु
1: मैं,
0: भारत।
1: बिल्कुल लघु भारत, और जैसा मुझे लगा कि एक घर से निकल के मैं दूसरे घर में आ गई हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपको ये
1: तो
0: ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम किसी विदेश की धरती पर हैं।
1: बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर, हाँ, भारतीय संस्कृति को इतना समेटा गया है, संजोया गया है, कि मेरे अपने घर में आंगन में हनुमान जी का चबूतरा है, और उस पर पताका, सफेद और लाल रंग की पताका
0: क्या
1: लहराई
0: बात है,
1: जाती है।
0: बहुत
1: हर
0: खूब, बहुत
1: हनुमान
0: खूब।
1: जयंती पर हम उस पताका को बदलते
0: यानी कि
1: हैं।
0: आपने अपनी संस्कृति को वहां सहेज कर रखा है,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी
1: जी,
0: जड़ों से
1: जड़ों
0: लगातार जुड़े
1: से।
0: रहें।
1: देखिए,
0: जी
1: एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जमीन से जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े हैं, आपको गिरने का डर नहीं है।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है ना, तो वो कभी नहीं गिरता।
1: बिल्कुल, तो
0: जी
1: हमें तो जड़ों से जुड़े रहना है, क्योंकि हम बिना जड़ों के हम कुछ भी नहीं रह जाते।
0: सही बात है। तो सुनीति जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2004 में आपकी पहली पुस्तक का लोकार्पण हुआ था,
1: जी
0: और उस पुस्तक के बाद में आपका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ, तो
1: जी
0: तब से लेकर अब तक आपका जो आपकी काव्य यात्रा है, जो भी साहित्य यात्रा है, तो उसमें कहाँ कहाँ, कितने कितने पड़ाव, कितनी पुस्तक आ चुकी है
1: जी
0: आपकी।
1: कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने यहाँ पर आने से पहले 7 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं।
0: अच्छा,
1: 7 पुस्तकें,
0: सात पुस्तकें, यानी कि सात आपके ये काव्य संग्रह हैं।
1: नहीं, उसमें से एक कहानी संग्रह है, पहला
0: जी
1: हमारे वृजन हमारी शक्ति, और उसके बाद 2017 में जब आई थी मैं अपने भारत के लिए 2 पुस्तकें लेकर आई थी, उसमें था अपनी अपनी मंजिलें और कागज की जिंदगी।
0: जी
1: कागज की जिंदगी एक गजल संग्रह है
0: अच्छा,
1: जी, अपनी अपनी मंजिलें जो है, तो इस तरह
0: तो
1: से
0: आप जो अपने गजल संग्रह है उसमें से कोई गजल आपको याद है क्या।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी हाँ, तो
1: इस
0: हम
1: तरह
0: चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को वो गजल पेश करें।
1: जी,
0: जी
1: इस तरह जिंदगानी बिताती हूं मैं, गम उठाती हूं और मुस्कुराती हूं मैं,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: देखता है जो तू मुस्कुरा कर मुझे,
0: हाँ,
1: तेरा हर एक सितम भूल जाती हूं मैं।
0: तेरा हर सितम भूल जाती हूं मैं,
1: इस तरह जिंदगानी बिताती
0: बिताती
1: हूं
0: हूं
1: मैं,
0: मैं।
1: गम उठाती हूं और मुस्कुराती हूं मैं, वो मेरी इस सदा से परेशान है, वो मेरी इस सदा से परेशान है, जब रूठ जाती हूं मैं। बहुत पुरानी गजल है
0: कोई बात नहीं,
1: जी।
0: कोई बात नहीं।
1: इस तरह जिंदगानी बिताती हूँ मैं, गम उठाती हूँ और मुस्कुराती हूँ मैं।
0: जी।
1: तो उसके बाद मेरी अपनी अपनी मंजिलें, और अब जो आई है 4 पुस्तकें लेकर आई हूँ, और उसमें है पानी के पिंजरे।
0: पानी के
1: पानी के पिंजरे,
0: क्या बात है, ये बहुत एक बड़ा अलग सा नाम है ये
1: जी, पानी के पिंजरे, उसमें से जरूर अभी आपको
0: पानी के पिंजरे, इसमें क्या है इसमें
1: जी।

0: के पिंजरे जो है वो उसमें शुरुआती रचनाएं हैं मॉरिशस पर हैं,
1: जी
0: मॉरिशस की संस्कृति पर, मॉरिशस के प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है,
1: जी
0: शुरुआती रचनाएं।
1: अच्छा,
0: फिर उसमें बहुत सारी मैंने रंग देने की कोशिश की है और उसमें सकारात्मक है और बहुत मैंने कोशिश की है कि नए नए रंग डालूं
1: चलिए,
0: उसमें से
1: तो
0: एक
1: एक
0: रंग का।
1: किसी रंग को आप हमारे श्रोताओं को
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब,
0: जीवन जीवन है कुरुक्षेत्र युद्ध में डटे रहो,
1: जीवन है
0: जीवन है
1: कुरुक्षेत्र
0: कुरुक्षेत्र युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो,
1: और निराशा से हरदम कटे रहो।
0: हटो नहीं बस सीधे सदा कदम रखो, हटो नहीं बस सीधे सदा कदम रखो और हौसला ही मन में हरदम रखो। कृष्ण तुम ही हो अर्जुन याद रहे, कृष्ण तुम ही
1: तुम
0: हो
1: ही हो अर्जुन,
0: अर्जुन
1: याद
0: याद
1: रहे।
0: रहे, पर हितकारी प्रशंसनीय मन नम रखो, जीवन है कुरुक्षेत्र युद्ध में डटे रहो। आएंगी मुश्किलें ना बच पाओगे तुम, आएंगी मुश्किलें ना बच पाओगे तुम, मगर जीतने होंगे तुमको कई समर, खुद पर ही रखो विश्वास यह सच मानो, होते हैं तो सुकर्म ही जग में सदा अमर, जीवन है कुरुक्षेत्र युद्ध में डटे रहो। और आजकल जो बच्चे बहुत परेशान हैं कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पाने की लालसा है,
1: जी
0: उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे, रुकना रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे, स्वयं जगानी खुद में प्रेरणा याद रहे, बेशक अल्प हो साधन चिंता ना करें,
1: बेशक
0: बेशक
1: अल्प
0: अल्प
1: हो
0: हो
1: साधन,
0: साधन चिंता ना करें, चैन की बंसी ही बजानी याद रहे, जीवन है कुरुक्षेत्र युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रचना है, एक मोटिवेशनल रचना है, एक प्रेरणा देती हुई रचना है
0: जी
1: यह।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो ये जो आपकी इस बार आप 4 किताबें लेकर आई हैं, उसमें से एक किताब का आपने जिक्र किया, दूसरी किताब
0: जी
1: का भी जिक्र किया,
0: जी
1: और 2 किताबें और कौन कौन सी हैं आपकी?
0: जी एक है चाय की चुस्कियां और तुम, आज वो शीर्षक सार्थक हो गया भारत आने के बाद। चाय की चुस्कियां हैं
1: अच्छा
0: और मेरे अपने मित्र हैं, मेरे अपने बंधु हैं,
1: जी
0: और वो
1: जी
0: प्यारी तुम के, तुम का मतलब सिर्फ मित्र ही है और तुम का मतलब मेरी वो यादें हैं जो पुरानी थी अब ताजा हो गई है, मैं 30 साल पुराने वाली सुरीती हो गई।
1: तो चलिए, ये चाय की चुस्कियां आप हमारे श्रोताओं के साथ भी शेयर कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: सौंधी कुल्हड़ इसका शीर्षक है, कुल्हड़,
1: जी
0: सौंधी सी मोहब्बत कुल्हड़ वाली चाय सी,
1: सौंधी सी,
0: सौंधी सी मोहब्बत कुल्हड़ वाली चाय सी,
1: हाँ,
0: बने अब जिंदगी भी हुल्लड़ वाली चाय सी,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बने अब जिंदगी भी हुल्लड़ वाली चाय सी, परदेश की कॉफी में वो बात कहाँ होती है,
1: हाँ,
0: परदेश की कॉफी में वो बात कहाँ होती है, खुशी अब दोस्त की फक्कड़ वाली चाय सी,
1: क्या
0: खुशी
1: बात
0: अब
1: है,
0: दोस्त की फक्कड़
1: फक्कड़
0: वाली
1: वाली चाय
0: चाय
1: की।
0: सी, छोड़ फॉर्मल कप,
1: हाँ
0: छोड़ फॉर्मल कप पीले कुल्हड़ वाली चाय,
1: हाँ
0: छोड़ फॉर्मल कप पीले कुल्हड़ वाली चाय, नाप नहीं रिश्ते, नाप नहीं रिश्ते, पीले अलहड़ वाली चाय,
1: पीले अलड़
0: पीले
1: वाली
0: अलहड़
1: चाय,
0: वाली
1: क्या बात है,
0: चाय।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
0: तो इसके साथ ही एक और रचना है, उम्र को भूल जाए, उम्र को भूल जाए ये शीर्षक है।
1: क्या बात है, निश्चित रूप से उम्र को भूलने की बात है, आपने बिल्कुल सार्थक हो रही है आपकी रचना के माध्यम से, आपको
0: जी
1: देखकर ऐसा लगता है।
0: बिल्कुल। उम्र ऐसी चीज है उसको आप बहाना ना बनाइए, अब तो उम्र
1: जी
0: हो गई है, अब क्या करेंगे, नई चीज सीख कर क्या करेंगे, 40 के हो लिए, अब नए रंगीन कपड़े पहन कर क्या
1: क्या
0: करेंगे।
1: करेंगे, सही
0: तो
1: बात है।
0: उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के साथ किस प्रकार आपको लगेगा कि आपकी संस्कृति भी जीवित है, ये उम्र दराज,
1: जी
0: जीवित उम्र दराज माँ बाप को सम्मान दो, जीवित उम्र दराज माँ
1: माँ
0: बाप
1: बाप को
0: को
1: सम्मान
0: सम्मान
1: दो,
0: दो, वक्त दो थोड़ा उनको सुनो उन पे ध्यान दो,
1: अच्छी बात है, बहुत अच्छी
0: वक्त दो
1: बात
0: थोड़ा उनको सुनो उन पे ध्यान दो, बार बार दोहराते एक बात पर धैर्य रखो,
1: है।
0: बार बार दोहराते एक बात पर धैर्य रखो, उम्र बढ़ेगी तुम्हारी भी कभी बच्चों को ज्ञान दो।
1: अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है,
0: उम्र की बात है, एक छोटी सी रचना, हस्ती
1: स्वागत।
0: जिंदगी में जरा घोलिए मस्ती, जिंदगी में जरा घोलिए मस्ती, भुला दीजिए दुखों की हस्ती,
1: भुला
0: भुला
1: दीजिए
0: दीजिए दुखों
1: दुखों
0: की
1: की हस्ती।
0: हस्ती, इतना मुश्किल नहीं मुस्कुराना, इतना
1: मुश्किल
0: इतना
1: नहीं है,
0: मुश्किल नहीं मुस्कुराना, खुशियों की सजाइए एक बस्ती,
1: खुशियों
0: खुशियों
1: की
0: की एक
1: सजाइए
0: सजाइए
1: एक
0: एक
1: बस्ती,
0: बस्ती।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत अच्छी
0: ये
1: बात है।
0: बहुत जरूरी है कि उम्र को भूलना है और आगे आगे हमें बढ़ते ही जाना है।
1: तो श्रुति जी, जो आपने बताया कि आपके जो 6

0: काव्य संग्रह आए हैं, एक कहानी संग्रह आया है, तो इससे लगता है कि आपका जो लेखन है वो पद्य में यानी कि पोइट्री में आपका ज्यादा शौक है।
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: गद्य भी लिखती हूँ, अभी रचनाएं आएंगी और बस सोचा है अभी तक तो एक काव्य संग्रह। मुझे लगता है कि हर किताब का समय है, जब
0: जी
1: उनका समय आएगा तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन लिखना जारी है।
0: लिखा जा रही
1: लघु
0: है। जी
1: कथाएं भी
0: जी
1: लिख रही हूँ और कहानियां भी लिख रही हूँ,
0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: मेरा एक लिखने का एक अलग तरीका है। काम को परिवर्तित करना ही मेरे लिए थकान मिटाना है।
0: जी जी जी जी
1: तो जब मैं गद्य लिखती हूँ, और मेरे दो पुस्तकें साथ साथ हमेशा चलती हैं,
0: अच्छा
1: गद्य लिख रही हूँ तो साथ साथ जब थोड़ा थकान लगती है तो एक कविता या अपने आप निकलती है,
0: क्या बात है
1: तो
0: क्या
1: एक
0: बात
1: कविता
0: है।
1: लिखती हूँ तो साथ
0: अच्छा
1: साथ दो पुस्तकें चलती रहती हैं।
0: अच्छी बात है।
1: हाँ जी, तो गद्य लिखना
0: यानी कि आगे हम उम्मीद करें कि आपकी बहुत जल्दी ही अगली बार जब आप भारत
1: जी
0: आएंगी,
1: जी
0: अपने देश
1: जी आप
0: आएंगी, अपनी
1: सभी की
0: मिट्टी पर
1: दुआएं।
0: आएंगी,
1: बिल्कुल
0: तो आपके साथ और भी कुछ उपहार होगा अपनी मिट्टी को देने के लिए।
1: बिल्कुल, और हम मुझे लगता है कि मेरा ही वो कर्म भूमि है, ये तो जन्मभूमि है,
0: जी
1: तो कर्म भूमि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वो माहौल वहाँ मिला और मैं लिख पा रही हूँ। और आप सभी की दुआएं शुभकामनाएं चाहिए कि बस इसी प्रकार काम
0: निश्चित रूप
1: करती
0: से
1: रहूँ।
0: आपकी मिट्टी की खुशबू आपको हमेशा ये दुआ देती रहेगी, आपको ये आशीर्वाद देती रहेगी। आप यूं ही अपने देश का नाम रोशन करें, अपना जो भी आपने अध्ययन करती हैं, आप जो लिखती पढ़ती हैं, वो आपकी जो लेखन है वो लगातार अनवरत जारी रहे,
1: जी
0: और आप अपनी संस्कृति का नाम रोशन करते रहें हमेशा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत
1: आपका भी
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ नीरज जी, और मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार शुभकामनाएं। आप जीवन में खुश रहें, सार्थक होते रहें सपने, भारत भूमि को बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा यहाँ से ठंडी हवाएं आती रहे, मेरा देश विकास की ओर अग्रसर रहे, मेरी मिट्टी से मुझे खुशबू आए समृद्धि की, खुशहाली की, बस मैं यही कामना करती हूँ। जय हिंद, जय मॉरिशस, जय
0: आमीन।
1: हिंदी।
2: अभी आप सुन रही थी सुरीति रघुनंदन से नीरज जैन की बातचीत कार्यक्रम आज की अतिथि में।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, किशोर कुमार सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है नागिन।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश के स्वर में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है उपासना।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शब्दरचना मखदूम मोइनुद्दीन की है, धुन इकबाल कुरैशी की दी हुई और फिल्म का नाम है चा चा चा।

बंदिश फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत आर डी बर्मन का।

कारवां फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। इस गीत के साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर सायं 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.6 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को

राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से

0: कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेना डेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। श्रोताओं, इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन विषय पर, खेल दुनिया में जानेंगे मल्लखंब का महत्व विषय पर। संभावनाएं में हम बात करेंगे आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर संभावना विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे वार्ता समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार विषय पर। वार्ताकार होंगी प्रेरणा वशिष्ठ। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा ग्राम्य लोक 6 बजे। श्रोताओं इसमें सुनेगा भेंट वार्ता देशी गाय बेहतर आय विषय पर, जिसमें अरविंद प्रताप सिंह से भेंट वार्ता करेंगे अनेंद्र सिंह। चर्चा होगी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि विषय पर। लोक धरोहरें में आप जानेंगे परंपराओं, व्रतों, त्योहारों के बारे में, और जानकारी दी जाएगी मंडी भाव की, मौसम की, और आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। मजदूर मंडल कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपसे करेंगे चर्चा 1857 की महान क्रांति के विषय में, और इसके अलावा आप सुनेंगे रीटा रॉय से उनकी वार्ता बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका विषय पर। प्रसारण समय रहेगा 6:30 का।

ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोतो, ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। 6:25 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसंग आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर महेंद्र कटियार की वार्ता का विषय होगा गर्मियों की जुताई से लाभ विषय पर।

श्रोतो, 7 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे जय कृष्णमूर्ति जयंती की पूर्व संध्या पर वार्ता जय कृष्णमूर्ति का जीवन दर्शन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजकर 31 मिनट पर। 8 बजे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे गाने नए पुराने।

कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर सत्यमित्र की लघु वार्ता, जिसका विषय होगा कान का दर्द, कारण और उपचार। 7:31 पर आप सुनेंगे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा आप सुनेंगे 10:00।

श्रोताओ, सुखविंदर और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी है सावध गुरवाणी फिल्म थी हल्ला बोल। शब्द रचना थी समीर की और संगीत था सुखविंदर सिंह का। अगला भजन सुनते हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म है जूली।

0: श्रोतो, ये आवाजें थी सोनू निगम और साथियों की। बोल थे उदय शंकर पानी के। सुरेंद्र कोहली के संगीत निर्देशन में फिल्म थी चार धाम। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम भजन।
1: आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं, जहां दिन पर दिन उन्नति के शिखर की कला व इनके बिहेवियर से

श्रोतों, आशा भोसले के गाए फिल्म काजल के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरसंध्या अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आज आप हैं मेरे यानी अपनी रेडियो साथी राशि के साथ। साथियों कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऐसे विषयों पर जानकारी जो आने वाले समय में न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था बल्कि हम युवाओं के करियर की दिशा भी बदल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के साथ जिसका विषय रहेगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। साथियों आज पूरी दुनिया हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों की मांग बहुत बढ़ने वाली है। अगर भारत के पास जरूरी खनिज नहीं होंगे तो हमें दूसरे देशों से इन्हें महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, बैटरियां और रक्षा उपकरण जैसे आधुनिक तकनीकों के लिए जिन विशेष खनिजों की आवश्यकता होती है उन्हें हम महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इन खनिजों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। ये मिशन भारत को तकनीकी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, ग्रेफाइट जैसे कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो नई तकनीक और आधुनिक मशीनों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अगर ये खनिज कम पड़ जाएं तो कई उद्योगों का काम रुक सकता है, इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है। और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत में इन्हीं खनिजों की खोज और उत्पादन बढ़ाना है ताकि हमारे देश को दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़े। सरकार इस मिशन के जरिए नए खनिज भंडार खोजेगी, खनन को बढ़ावा देगी, रिसाइकलिंग पर काम करेगी, नई तकनीक विकसित करेगी और साथ ही हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। साथियों बात करें रोजगार के अवसरों की तो इस मिशन से आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में नौकरी और रिसर्च की संभावनाएं बढ़ेंगी वो है माइनिंग, इंजीनियरिंग, बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और पर्यावरण विज्ञान। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये मिशन

देश को तकनीक, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में मजबूत बनाने में मदद करेगा। आने वाले समय में जिन देशों के पास महत्वपूर्ण खनिज होंगे, वही तकनीक और विकास में आगे रहेंगे। इसलिए भारत सरकार का ये कदम देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। साथियों, ये मिशन भारत के लिए केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये धरती माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा भी है। आज जब हम मदर्स डे मना रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जिस तरह एक माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह ये धरती माँ भी सदियों से हमें जीवन के हर संसाधन दे रही है। जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, वैसे ही इस धरती माँ की रक्षा करना भी हमारा परम धर्म है। तो मदर्स डे पर हमारा कार्यक्रम सुन रही सभी प्यारी प्यारी मदर्स को हम विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे, और हमारी सभी प्यारी मम्मियों को हम डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वेलकम बैक साथियों। आज के कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है करियर संभावनाएं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ी। साथियों, ग्राफिक डिजाइनिंग आज के समय में एक बहुत ही लोकप्रिय और तेजी से बढ़ता हुआ करियर विकल्प बन चुका है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ने के कारण हर छोटी बड़ी कंपनी को अच्छे डिजाइनर्स की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस शुरू करने के भी अच्छे अवसर मौजूद हैं। साथियों, ग्राफिक डिजाइनिंग में कई प्रकार के करियर विकल्प हैं। एक ब्रांड या विजुअल डिजाइनर कंपनियों के लिए लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, पैकेजिंग और मार्केटिंग मटेरियल्स तैयार करता है। वहीं सोशल मीडिया डिजाइनर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिएटिव पोस्ट्स, बैनर्स और थंबनेल्स बनाता है। आज के समय में सोशल मीडिया मार्केटिंग के बढ़ने से इस क्षेत्र में काफी डिमांड है। इसके अलावा यूआई डिजाइनर मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करते हैं, जबकि यूएक्स डिजाइनर ये सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करने में आसानी हो। यदि किसी व्यक्ति को एनिमेशन और वीडियो इफेक्ट्स में रुचि है तो वो मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर भी बन सकता है। कई कंपनियां ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ वीडियो एडिटिंग भी आती हो, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी एक मजबूत करियर विकल्प माना जाता है। इसके अलावा पैकेजिंग डिजाइनर प्रोडक्ट बॉक्सेस और लेबल्स डिजाइन करता है, जबकि इलस्ट्रेटर और डिजिटल आर्टिस्ट कस्टम आर्टवर्क्स, कॉमिक्स और डिजिटल इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। भारत में ग्राफिक डिजाइनिंग की सैलरी और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। विशेष रूप से यूआई या यूएक्स और मोशन ग्राफिक्स जैसे क्षेत्रों में सैलरी पैकेज काफी अच्छे रहते हैं। फ्रीलांसिंग में तो कमाई पूरी तरह स्किल्स, क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहती है। ग्राफिक डिजाइनिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में केवल डिग्री ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि स्किल्स, क्रिएटिविटी और पोर्टफोलियो ज्यादा मायने रखते हैं। आज बहुत से सफल डिजाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज और सेल्फ लर्निंग के माध्यम से ये स्किल सीखी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करे, नए ट्रेंड्स सीखे और अच्छा पोर्टफोलियो बनाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक सफल और स्थायी करियर बनाया जा सकता है। तो साथियों, अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। साथियों, करियर संभावनाओं पर आधारित ये सेगमेंट यहीं संपन्न करते हैं। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय रहेगा समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार। वार्ता है, वार्ताकार रहेंगी प्रेरणा वशिष्ठ।
1: समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें व्यक्तियों की समृद्ध और संबंध का सामूहिक अनुभव होता है। समाज में लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ नियमों और मूल्यों के आधार पर रहते हैं। समाज में व्यक्ति संबंध, कल्चरल डाइवर्सिटी और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से आत्म पहचान बनाता है और यही समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार भी है। आज हम बात करेंगे कि सम्मान और बराबरी का मूल क्या है। एक विविधता से भरी दुनिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को पहचानें और उसे बनाए रखें, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो जहां सम्मान और समानता की भावना का आदान प्रदान हो। सोचिए एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति उनके परिचय से परे अपने आप को गौरव से समझे।

0: और समान व्यवहार का अधिकार रखे। यह नजरिया एक न्यायिक और प्रगतिशील समाज की नींव को रखता है। सम्मान मूल रूप से हर व्यक्ति का आंतरिक मूल्य है और यह समाज में रह रहे हर व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम उनकी मानवता को स्वीकृत करते हैं और साथ ही समाज में रचनात्मकता का मूल्य बढ़ाते हैं। समान व्यवहार दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्वक और निरपेक्ष रूप से दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सबको बिना भिन्नता का समान अवसर का अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। एक न्यायिक समाज में सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं और सबको न्याय मिलता है। सम्मान और समान व्यवहार का अधिकार सिर्फ एक ख्याली कल्पना नहीं है, ये किसी भी समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने आप को सम्मानित और न्यायपूर्वक और व्यवहारित महसूस करते हैं तो वे अपने समुदाय में सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इससे समाज में सहयोग बढ़ता है और समाज प्रगति करता है। लेकिन हमारी वास्तविकता यह है कि हमारी दुनिया हमेशा आदर्शों को प्रतीत नहीं करती। भेदभाव, पक्षपात और असमानता विभिन्न रूपों में बनी रहती है। यह है हमारा सामंजस्य कि हमें इन रुकावटों को चैलेंज करना है और उनको नष्ट करना है। एक ऐसे समाज की ओर बढ़ने के लिए जहां आदर्शों का उपभोग नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में समाहित हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। हमें बचपन से ही सहानुभूति और समझ का संस्कार देना आवश्यक है और आने वाली पीढ़ी को एक अधिक न्यायपूर्वक और समर्पणशील दुनिया की दिशा में मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। और इसके अलावा सरकार और संस्थाएं ऐसी नीतियां बनाएं और उन्हें लागू करें जो समान व्यवहार को बढ़ावा दें और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा करें। ढांचा ऐसा हो जो हर व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करे। इस तरह हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें सम्मान और समान अवसर सबके लिए मौजूद होंगे। अगर हम बात करें उस महत्वपूर्ण सेक्टर की जिसे व्यवसाय कहते हैं, तो व्यवसाय में ऐसी नीतियों को लागू करके एक मिसाल कायम करें जो विविधता और एकजुटता पर बल देती हो। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका योगदान इम्पोर्टेंट है और न्यायपूर्वक है, तो वह एक नई ऊर्जा से और प्रगतिशील होते हुए कार्य करते हैं। यह सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संस्था के पूर्ण सफलता और स्थिति का भी एक आधार बनता है। समुदायों का भी महत्व है। भिन्नता को गले मिलाने और बातचीत को बढ़ाने का समर्थन करना संकेत और गलतफहमियों को खत्म कर सकता है। खुले विचार के लिए स्थल बनाने से हमें स्थितियों को पार कर सकते हैं और विभिन्न जीवन के पथ पर खड़े हुए लोगों के बीच एक रिश्ता बना सकते हैं। अंत में आदर और सम्मान व्यवहार का अधिकार केवल एक ऊंचा विचार नहीं, बल्कि हमारी मानवता की मूल्य है। जैसे हम अपनी विविध दुनिया में चलते हैं, आइए याद रखें कि हमारा बल एकजुट है, समझ और सम्मान में छिपा हुआ है। हम समस्याओं का समाधान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हमारा ज्ञान और अनुभव आपस में साझा करते हैं, तो ही हम एक सच्चा, आदर्श और सम्मान भरा समाज बनाते हैं।
1: साथियों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार। वार्ताकार थी प्रेरणा वशिष्ठ। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, चलते हैं सेगमेंट खेल दुनिया की तरफ और जानते हैं मलखम्ब का महत्व। साथियों, सदियों पहले ना तो जिम थे, ना प्रोटीन शेक्स और ना ही मशीन्स थी, फिर भी भारतीय पहलवानों की ताकत दुनिया में मशहूर थी क्योंकि उनका ट्रेनिंग सिस्टम नेचुरल और फंक्शनल था। आज हम युवा जिम और कैलिस्थेनिक्स को कूल मानते हैं, लेकिन भारत में प्राचीन समय में एक ऐसी कला थी जो इन सब का ओरिजिनल वर्जन थी। उस कला का नाम है मलखम्ब। मल का मतलब है पहलवान और खम का मतलब है खम्बा यानी पोल। मलखम्ब का मतलब है खम्बे पर किए जाने वाले योद्धाओं का अभ्यास। इसमें खिलाड़ी लकड़ी के पोल, रस्सी या लटकते खम्बे पर स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस का प्रदर्शन करते हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं, बॉडी, माइंड, करेज और डिसिप्लिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। साथियों, माना जाता है कि मलखम्ब की जड़ें 12वीं सदी तक जाती हैं। पुराने समय में भारतीय योद्धा और पहलवान इसे युद्ध प्रशिक्षण

के लिए किया करते थे। मलखंब इतना खास इसलिए भी है क्योंकि इसे करने से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। आप जिम में अलग अलग दिन चेस्ट डे, लेग डे, शोल्डर डे करते होंगे, लेकिन मलखंब में पूरा शरीर एक साथ काम करता है। ग्रिप, कोर, शोल्डर्स, लेग्स सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए किसी भी मलखंब खिलाड़ी का बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। आज का यूथ लो स्टैमिना और वीक पोस्चर से जूझ रहा है। मलखंब इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये बॉडी एक्टिव करता है, फोकस बढ़ाता है और डोपामीन को बूस्ट करता है। मलखंब सिखाता है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क हैंडलिंग और देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी। साथियों, आपको लग रहा होगा कि शायद ये कला आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलखंब अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहा है, स्कूल्स और अकेडमिक्स में सिखाया जा रहा है और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी इसे एक्सप्लोर करने लगे हैं। भारत की ये कला अब दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है। अगर हमारे कोई श्रोता मलखंब कला को सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं तो हम आपको ये सलाह देंगे कि सर्टिफाइड कोच से सीखें, बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रिप प्रैक्टिस करें और जल्दी एडवांस टर्न्स की कोशिश ना करें, आप चोटिल भी हो सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आप सभी को मलखंब पर यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, सड़क अनुशासन केवल नियम नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। हम युवाओं को सड़क अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि सड़क पर सभी की सुरक्षा बनी रहे। हमें ट्रैफिक नियमों, सिग्नलों और स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए तथा बाइक चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट अवश्य पहननी चाहिए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही नशे की हालत में वाहन चलाना चाहिए। ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेक और बिना संकेत दिए लेन बदलने से बचना चाहिए। साथ ही पैदल यात्रियों, बुजुर्गों और अन्य वाहन चालकों का सम्मान करना चाहिए। धैर्य और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना ही एक अच्छे नागरिक और सुरक्षित समाज की पहचान है। आइए अब साथ में आनंद लें कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

साथियों, इसी गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्यलोक।

0: किसान भाइयों राम राम। कार्यक्रम ग्रामीणलोक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे, करने आपसे खेती किसानी की बात, आपके हमारे हित की बात। किसान भाइयों, मौसम ने पलटा मारा है। बारिश, ठंडी हवा और तापमान में कमी होने से एकदम से मौसम का मिजाज बदला है। इस बदलते हुए मौसम में लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीमार हुए तो फिर हमारे काम, पैसे, शरीर, हर चीज का नुकसान होगा और डॉक्टर और दवाओं के चक्कर में शरीर की जो रेड़ होगी वो अलग होगी। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, हम में से ज्यादातर किसान साथी खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करते हैं। पशुओं का उपयोग हम बोझा ढोने, दुग्ध उत्पादन से लेकर डेयरी उद्योग में करते हैं। खासकर बात जब गौ माता की आती है तो गाय के गोबर, मूत्र आदि का उपयोग पूजन सामग्री और दवाओं आदि को बनाने में भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं देशी गाय बेहतर आय विषय पर अरविंद प्रताप सिंह से अनेंद्र सिंह की ये बातचीत।
1: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक, और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो आजकल बहुत किसानों के बीच उभर रही है। हम जानते हैं जहाँ लागत कम होती है, मिट्टी स्वस्थ होती है, तो ये वो चीज़ें हैं जो किसान की आय बढ़ाती हैं। और इन सब में जो केंद्रीय भूमिका निभाती है वो होती है हमारी देशी गाय। तो आज देशी गाय पर और जो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं एक प्रगतिशील किसान, अरविंद प्रताप सिंह जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: श्रोताओ, अरविंद जी बरसों बरस से प्राकृतिक और देशी खेती से जुड़े हुए हैं और आजकल तो किसान साथियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले तो आप अपने परिचय दें हमें और अपने जो प्राकृतिक खेती का जो सफर है उसके बारे में थोड़ा हमारे किसान साथियों को।

0: कराएं।
1: जी सर, हम विगत 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं
0: जी,
1: जो गऊ आधारित है हमारी, और जीरो बजट, क्योंकि हम जीरो बजट इसको इसलिए कह सकते हैं कि हम इसको एक देसी गाय के सहारे अपनी पूरी खेती को करते हैं। तो इसमें हमारी जो लागत है वो सर ज्यादा से ज्यादा 10-12% लगती है, तो वो जीरो के ही समान है।
0: आजकल के परिदृश्य को देखें तो वो 10-12%, 15% कुछ खास नहीं है, तो हम उसे जीरो मान सकते हैं।
1: जी, क्योंकि रासायनिक खेती जो हम कर रहे हैं उसमें 70-75% लागत जाती है, और इसमें अगर 10% है तो कोई नहीं।
0: और सबसे बड़ी जो बात है कि वो लागत तो लगी रही है, आपने कहा 70-75%, मिट्टी की जो सेहत है वो और खराब हो रही है।
1: जी, अब गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि जब हम देसी गाय के गौमूत्र और गोबर के सहारे जब खेती शुरू करते हैं तो उसमें हम जो भी प्रकृति की दी हुई चीजें हैं, जैसे कि साथ में बेसन है, गुड़ है, इन चीजों को जब हम मिला के इस्तेमाल करते हैं यानी खाद के रूप में, तो हम जैसे कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, इनसे हम एक

0: जी, अब गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि जब हम देसी गाय के गौमूत्र और गोबर के सहारे जब खेती शुरू करते हैं तो उसमें हम जो भी प्रकृति की दी हुई चीजें हैं, जैसे कि साथ में बेसन है, गुड़ है, इन चीजों को जब हम मिला के इस्तेमाल करते हैं यानी खाद के रूप में, तो हम जैसे कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, इनसे हम एक जीवामृत नाम खाद को देते हैं, तो वो जीवामृत हम बना लेते हैं जो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं।
1: रासायनिक
0: अन्य
1: खाद की जगह।
0: जी रासायनिक खाद या आप कहें जैविक खादें, हम इनको किसी को भी हाथ नहीं लगाएंगे, और इस समय हम जो प्रयोग कर रहे हैं अपने फार्म पे वो सिर्फ जो है घन जीवामृत, जीवामृत और बीजामृत। बीजामृत से हम बीज शोधन करते हैं,
1: ठीक
0: ये भी
1: बात।
0: हमारे देसी गाय के जो है गौमूत्र गोबर वगैरह से ही बनता है, ऐसे ही हमारा जो है कि घन जीवामृत वो भी इन्हीं चीजों के सहारे बनता है। तीसरा जो हम कीटनाशक वगैरह हैं और फंगिसाइड, इनको भी हम देसी गाय के मट्ठे से तैयार करते हैं, और प्रकृति द्वारा दी गए जैसे कि नीम है अपना, अकोड़ा है, अरंडी है, धतूरा है, तो इन चीजों से ही अपने सारे के सारे कीटनाशक भी
1: कीटनाशक
0: तैयार
1: तैयार
0: कर
1: करते हैं।
0: लेते हैं हम। मतलब कोई भी रासायनिक चीज यूज करते ही नहीं है जिसमें कि हमारा पैसा खर्च हो।
1: माने आपने कहा कि जो देशी गाय है वो हमारी खेती की रीढ़ बन गई। माने
0: जी
1: हमने उसके गोबर से, उसके गौमूत्र से, और जो नेचुरल चीजें हैं, नीम हुआ, अकौआ हुआ, या धतूरा आपने बताया,
0: जी
1: इन सबको मिला के कीटनाशक तैयार कर लिए हमने। सारी जो घनजीवामृत, जीवामृत और बीज शोधन के लिए बीजामृत,
0: बीजामृत
1: तो सारी की सारी जो व्यवस्था आप रासायनिक खादों के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए करते थे, तो यहाँ उत्पादन भी आप सुनिश्चित कर रहे हैं, बढ़ा हुआ मिलेगा, और जो मिट्टी है खेत की, उसके स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखने की यहाँ पर पूरी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं।
0: जी और सर मृदा के स्वास्थ्य की अगर बात करते तो मृदा का ही स्वास्थ्य नहीं, उससे जो भी उत्पादन होता है
1: जी
0: तो उसको जब हम या जो भी पशु खा रहे हैं तो उनका भी स्वास्थ्य उत्तम होगा,
1: बिल्कुल
0: बीमारियां कोई भी नहीं आएंगी पास में, बिल्कुल शुद्ध भोजन प्राप्त होता है इससे।
1: कहने का अर्थ यह है कि जब एक किसान रासायनिक खादों का या जैविक खादों का उपयोग करता है अपनी खेती में, या कीटनाशकों का करता है, तो उद्देश्य तो वही होता है कि हमारी खेती की पैदावार ज्यादा हो,
0: जी
1: भले ही वो स्वास्थ्य की कॉस्ट पे हो। ये उद्देश्य रहा जहां हमने विगत में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग किया, और उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जो सेहतमंद प्रोडक्ट थे उनसे भी दूर हो गए, और जो मिट्टी की सेहत थी हमारी, तो उस पर भी कुप्रभाव पड़ा। तो जो
0: जी
1: देशी
0: हाँ
1: गाय है वो अगर केंद्र में रखी जाए तो वो इस सारी व्यवस्था को संभाल सकती है, और हमारा जो खर्चा है, लागत है,
0: जी सर
1: जो हम रासायनिक खादों में या उर्वरकों में ज्यादा इन्वेस्ट करके जाया कर रहे हैं, उस पर भी शायद कंट्रोल किया जा सके।
0: हाँ, ये सारा का सारा इसीलिए तो कहा गया है कि गाय हमारी माता है, बल्कि हमारी ही नहीं, हम तो ये कहते कि पूरे विश्व की गाय माता है, क्योंकि वो माँ के समान ही काम कर रही है। जब वो चारा खाती है तो बदले में हमें दूध भी दे रही है, और गोबर और गौमूत्र फसलों के लिए
1: अमृत
0: एक
1: है।
0: बहुत अच्छा अमृत के समान जो है
1: एक देशी
0: वो
1: गाय
0: दे रही
1: को,
0: है।
1: जी अगर मैं समझना चाहूं कि एक देशी गाय जो है वो कितने हमारी खेती के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर देती है।
0: यदि सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा ये मानना है कि एक देसी गाय के सहारे हम 10 एकड़ जमीन बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो सुभाष पालेकर जी का कहना है कि 25 से 30 एकड़, लेकिन हमारा मानना है जो हम 10 वर्षों से कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से 10 एकड़ जमीन एक देसी गाय के सहारे कर सकते हैं। और हमें जैसे जीवामृत बनाना है, नीमास्त्र बनाना है, तो सभी में गोबर चाहिए, या घन जीवामृत हमें बनाना है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें पर्याप्त गोबर और गौमूत्र एक देसी गाय से मिल जाता है। और दूसरी बात एक और है सर कि देसी गाय का जो गोबर है ये केवल फसलों के लिए एक पोषक तत्व ही नहीं है, बल्कि ये दूसरे रूप में हम तो ये कहेंगे कि जितने भी पोषक तत्व तो हमारे पौधों को चाहिए, हमारी मृदा को चाहिए, वो सारे के सारे इसमें
1: विद्यमान
0: विद्यमान
1: है।
0: हैं। इसमें क्या करते हैं रासायनिक में, हम एक पोषक तत्व के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे
1: ठीक।
0: कि नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया डालनी पड़ती है, फास्फोरस के लिए डीएपी, पोटास के लिए पोटास, लेकिन देसी गाय के गोबर से जब हम निर्मित करते हैं जीवामृत को,

0: तो उसमें सारे पोषक तत्व जो हमारे पौधे के लिए चाहिए, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसमें 3 तो हमारी प्रकृति ने दे दिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन।
1: हाइड्रोजन
0: बाकी के हमें अलग अलग नहीं देने पड़ते, यानी कि हमारी जो गौ माता है तो वो हमारी एक जो है खाद की फैक्ट्री है,
1: ठीक बात,
0: क्योंकि उसके अंदर से जो भी गोबर और गौमूत्र आता है
1: उसमें वो सारे पोषक
0: उसमें
1: तत्व
0: सारे
1: विद्यमान
0: वो
1: हैं जो
0: पोषक
1: चाहिए
0: तत्व
1: हमारी।
0: हैं जो हमारी मृदा को और पौधों को चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते कि बिना गाय के प्राकृतिक खेती असंभव है। तो एक देसी गाय और दूसरे ये वनस्पतियां और पौधे, इनके बिना भी हम प्राकृतिक खेती में अधूरे हैं सर।
1: बिल्कुल, प्राकृतिक खेती में अगर मैं समझना चाहूं तो लागत और आय इसमें कितना वेरिएशन, कितना अंतर आ जाता है
0: रासायनिक और नेचुरल में,
1: नेचुरल में?
0: जी इसको हम ऐसे कहेंगे कि जैसे कि नेचुरल में हम बाजार से बीज लाते हैं,
1: जी
0: उसमें भी हमारा पैसा जाता है, हम खादे खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, कुल मिला के हम सारी की सारी चीजें बाजार से खरीदते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि हमें खाद की आवश्यकता पड़ी तो हमने तुरंत अपने गाय के गोबर, गौमूत्र और अपने घर का गुड़ बेसन इत्यादि से
1: जो
0: अपने
1: जीवामृत तैयार किया है।
0: जीवामृत तैयार कर लिया। हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, हमने अपना बना लिया। इसके अलावा बीज हम प्राकृतिक खेती में अपना देसी बीज को बोते हैं, जो हमारे घर में पहले से ही है, सदियों से प्रतिवर्ष हम उसी बीज को बोते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है पानी भी सर, रासायनिक खेती में जो पानी हम देते हैं और नेचुरल में, हम 90% जल की बचत कर लेते हैं।
1: इतना अंतर,
0: इतना अंतर है, हमारे पौधे जो है केवल 10% पानी को शोषित करते हैं, क्योंकि हम जब प्राकृतिक खेती में मल्चिंग का जो काम कर देते हैं तो मल्चिंग करने से नमी बनी रहती है घास फूस इत्यादि
1: तो
0: से,
1: उतने पानी की फिर बाद
0: तो
1: में सिंचाई
0: नब्बे
1: की
0: परसेंट
1: आवश्यकता नहीं
0: जी
1: पड़ती।
0: तो 90% पानी को भी हम बचा लेते हैं, तो पानी की लागत हमारी कम हुई। जुताई हम प्राकृतिक खेती में ना के बराबर या तो करते ही नहीं, या अधिकतम एक या दो जुताई, वो भी मेरा बच गया, बीज का पैसा बच गया, बाहर से ये खादों का पैसा बच गया,
1: और फिर
0: दवाइयों
1: अलग
0: का
1: अलग जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते
0: जी
1: हैं उनकी भी हमें डोज देनी पड़ती है, वो और
0: रासायनिक
1: ज्यादा
0: में।
1: लागत हमारी बढ़ा
0: लेकिन
1: देती है।
0: इसमें सर
1: इसमें सारा का
0: सारा का
1: सारा
0: सारा उसी में है,
1: जी
0: हमारे जो 17 पोषक तत्व हैं वो पूरे के पूरे इसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हमें प्राप्त हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कुल मिला के लागत जो है रासायनिक में बहुत अधिक जाती है, और इसमें हमें लागत भी हमारी घट जाती, लागत के अलावा जो
1: सभी चीजें तो घर पे ही बन जा रही हैं आपकी।
0: हाँ हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर
1: डिपेंडेंट, आजकल का
0: नहीं
1: तो
0: है।
1: माहौल देख रहे हैं, भाई सप्लाई बंद है,
0: जी डीएपी
1: जितनी
0: के
1: भी
0: लिए लाइन
1: डीएपी, हाँ
0: लगती है,
1: लाइन लग रही है,
0: लेकिन हमने
1: तो
0: नहीं लगाई।
1: ऐसी जगह पे फिर आपका जो एक आत्मनिर्भर का कंसेप्ट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो इस बात से समझा जा सकता है।
0: जी
1: फसल की गुणवत्ता, आपने कहा था कि क्या ऐसा होता है कि जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ज्यादातर किसान ऐसा उनके दिमाग में ये चीज है, जहन में ये कहीं ना कहीं रहता है कि हमारी पैदावार जो है प्राकृतिक खेती में कम होती है, क्या ऐसा है और उसकी
0: जी
1: गुणवत्ता पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी थोड़ा बताएं।
0: जी हम ये मानते हैं कि रासायनिक खेती में हमारी पैदावार अधिक आती है और प्राकृतिक खेती में शुरू के 2 वर्षों में हमारी पैदावार घटती है। वो सिर्फ इस कारण से कि हमारी मिट्टी की जो आदत पड़ी है वो रासायनिक तत्वों को खाने की पड़ी है, और यदि हम उनको जब बदलाव करेंगे तो उसमें दिक्कतें आती
1: तो वो
0: हैं।
1: समय लेता है।
0: हाँ तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो इसमें किसान को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और जब नेचुरल में आए तो उसमें ये ना देखें कि हमें पहली फसल में 30% जैसे गिरावट आ रही है, अगली फसल में 20% रह जाएगी वो, और तीसरी और चौथी फसल में जाके हम समान हो जाते हैं। लेकिन वहां पे भी हमें सर जो है उत्पादन घटेगा, लेकिन जब लाभ हम देखें उसका आंकलन करें तो हमें कहीं घाटा नहीं है। यदि कि रासायनिक हमारी जो फसल है वो यदि 2,000 में हमारी बिकती है कुंटल, तो नेचुरल हमारी 2,500 से 3,000 रुपए कुंटल बिकती है। तो भले ही हमें वहां पर 30% का जो है कि
1: उत्पादन में भले ही लॉस आपको
0: उत्पादन में
1: दिखे
0: लॉस
1: लेकिन
0: है,
1: आपको रेट थोड़ा अच्छा
0: लेकिन
1: मिलता है।
0: जब हम वहां पर पैसे की बात करें आमदनी की, तो वहां पे हमें बराबर समान रेट हो जाते हैं
1: अंतर वहां
0: पैसे
1: पे
0: में।
1: बहुत ज्यादा नहीं आपको
0: हाँ
1: दिखाई देता।
0: अंतर नहीं आता। तो हमारा तो ये मानना है कि रासायनिक खेती में उत्पादन अधिक जरूर मिलता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में हमें रेट अधिक मिलने की वजह से हमें कोई भी किसी प्रकार का लॉस
1: नुकसान
0: नहीं
1: नहीं।
0: नहीं है।
1: ठीक बात।

0: अच्छा, आजकल का जो जमाना है उसमें हमारी जो जीवन शैली है, खाने पीने की जो आदतें हैं, उसको अगर हम देखते हुए बात करें तो सेहत के प्रति अब लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है।
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
1: जी
0: तो ये जो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है, देशी गाय का उसमें एक इंक्लूजन है,
1: जी
0: तो उससे आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको और बल मिल रहा है, किसानों में एक अवेयरनेस आ रही है इसके प्रति?
1: जी सर, देखिए बात हम करें एक तो गुणवत्ता की भी, जो अभी आपने कहा था,
0: जी
1: तो वास्तव में नेचुरल में गुणवत्ता है। जैसे कि टेस्ट, रासायनिक में टेस्ट नहीं आता है किसी भी सब्जी में, सुगंध
0: हाँ,
1: नहीं
0: तो
1: आती
0: ये
1: है।
0: बात तो हम हर किसी से सुनते हैं कि
1: जी
0: पहले जो सब्जियों में टेस्ट हुआ करता था वो शायद अब नहीं
1: जी
0: आता।
1: वो नेचुरल में आता है। और दूसरी बात कि यदि हम इनको खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में नई एक स्फूर्ति जगती है, यानी नेचुरल जो भी उत्पाद हैं जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमें एक ताकत का एहसास होता है। तो हर आदमी जो आजकल बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, जब उनको नेचुरल या ऑर्गेनिक खाने को मिल रहा है तो वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और लगातार इसी वजह से अब
0: ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की
1: ऑर्गेनिक
0: मांग
1: की
0: बढ़
1: और
0: रही है।
1: नेचुरल की मांग बढ़ रही है दिनों दिन। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि रासायनिक खेती को धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे और प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे।
0: अच्छा अरविंद जी, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि आम तौर पे जो इलाका है ये, इसमें छोटी जोत के किसान ज्यादा हैं।
1: जी
0: एक और मिसकंसेप्शन है, वो ये कि जब हमारे पास जमीन थोड़ी है, कम है, तो उसमें क्या हम प्राकृतिक खेती करें, उसके लिए तो ज्यादा जमीन चाहिए। क्या ये धारणा सही है?
1: इसके लिए तो हम सर ये कहेंगे ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा अगर 5 आदमियों का परिवार है और यदि मेरे पास में 5 बीघे ही जमीन है तो हमें क्या जरूरत है जो कि हम एक फसल को करें और उसको बाजार में औने पौने पर बेच के और 10 तरीके की चीजें हम अपने लिए बहुत
0: बाजार से
1: महंगे दामों
0: खरीदें।
1: में खरीदें। हमने ऐसा एक मॉडल अपने यहाँ तैयार किया है जो कि 1 एकड़ में 5-6 व्यक्तियों का परिवार साल भर के लिए अपनी सारी जरूरत की चीजें उसमें उगा सकता है, जो भी जमीन में जो हो सकती हैं, जैसे कि थोड़े थोड़े एरिया में वो हर चीज को करे जो जरूरत की है, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं और आपके खाद्यान्न हैं, दलहन तेलहन सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी जगह में वो अपने परिवार के लिए
0: परिवार के लिए
1: पहले
0: उगाना
1: करें,
0: शुरू करें।
1: उगाना शुरू करें। तो उसमें क्या है, उसको 2 लाभ मिलेंगे। एक तो ये कि शुद्ध चीजें उसके परिवार को खाने के लिए, यानी कि जो भी जमीन में हो सकती है अधिक से अधिक वो उसको मिल जाएंगी। अब बात आती है ये कि जो बाहर से जैसे खरीदनी है अपने यहाँ पे नहीं होती है, जैसे कुछ मसाले ऐसे हैं, जबकि हम तो अपने यहाँ इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता ये सारे
0: सारे कर लेते हैं।
1: सारे लगा रहे हैं सर। तो हम ये मानते हैं कि जो चीज मिट्टी में हो सकती है वो किसान को अपने ही खेत में करना
0: थोड़ी
1: चाहिए।
0: कम पैदा होगी शुरू में,
1: हाँ, और जो
0: लेकिन
1: थोड़ी सी जगह ज्यादा बच जाए उसमें ऐसी फसलों को करे जो कि बाजार में बिक भी जाए और सह फसली खेती करे, सिंगल फसल कभी ना बोए, यानी कि एक ही जगह में।
0: आप सारी चीजें करें जो आपको घर में चाहिए।
1: हाँ, जैसे कि 7 परत का हमने मॉडल एक तैयार किया है कि एक ही समय में एक ही जगह में हम 7 फसलों को ले सकते हैं। जैसे ये कंद की फसलें हैं, कंद वाली वो हम जमीन के नीचे ले लेते हैं, फिर हम 6 इंच वाली फसलें उसी जमीन में उसी जगह पे बो देते हैं, फिर उसके बाद में 2 से 2.5 फिट वाली फसल बो देते हैं, फिर हम 5 फिट वाली फसल बो देते हैं उसी में। और पौधे भी हम जो है कि 3 प्रकार के लगा देते हैं, जिनकी हाइट 8 फुट तक है वो कुछ पौधे लगा दिए, फिर हमने उसी के बीच बीच में दूर दूर जिनकी हाइट जो है कि 15 से 20 फीट है उन पौधों को लगा दिया। तीसरी हमने क्या किया कि जो 25 फुट से ऊपर पौधे हैं उनको दूर दूर उसी में लगा दिया। बेल वाली फसलें हमने उन पेड़ों के ऊपर चढ़ा दिया, किनारे से हमने झाड़ी वाली फसल ले ली, करौंदा नींबू वगैरह। तो इस तरीके से हम यदि चाहें तो 1 एकड़ में हम 5-6 व्यक्तियों के परिवार के लिए पूरा का पूरा जो है बंदोबस्त कर सकते हैं।
0: वहां पे भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं हम अगर समग्र रूप में देखें तो जो प्राकृतिक खेती है, देशी गाय जिसके केंद्र में है,
1: जी
0: वो एक हमारी लागत को घटा भी रही है और लंबे उसमें देखें नजरिए से तो हमारी लगातार आय का एक साधन भी बनती जा
1: बहुत
0: रही
1: अच्छा
0: है।
1: साधन भी है और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें वो आत्मनिर्भर बना रही है। हम किसी भी देश के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे और जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहेगा।
0: अच्छा अरविंद जी, ये जो गाय है देशी गाय, इसको बहुत सारे किसान साथी ये नहीं समझ पाते कि हमें लेना कहाँ से चाहिए।

0: देशी गाय हमें कहाँ मिलेगी, तो
1: जी
0: उसके लिए क्या आप सुझाना चाहेंगे?
1: जी हम उनको केवल एक ही सुझाव देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार की भी योजना है, आप देसी गाय किसी बड़ी गौशाला से लें, जैसे सिंधी है, गिर गाय है, इसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसमें 40,000 रुपए एक गाय पे सरकार अनुदान भी दे रही है, 50%
0: अच्छा
1: अधिकतम 40,000। दूसरी चीज, जिन किसानों के पास गाय लेने के लिए पैसा नहीं है तो वो लोकल की अपनी जो देसी गाय है ये गौशाला से सरकार निःशुल्क दे रही है किसानों को, और 1,500 रुपए प्रति महीने उसको खिलाने के लिए भी सरकार दे रही है मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत। तो उस योजना में जुड़ के किसान जो है कि देसी गाय पाल सकता है और उस पर कोई ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा।
0: तो किसान साथियों, प्राकृतिक खेती आपकी आय का साधन बन सकती है, आपको बेहतर स्वास्थ्य दे सकती है, और देशी गाय जो है वो सिर्फ आय का साधन नहीं, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो हमें स्वावलंबी भी बनाती है और प्रकृति से जुड़ने का एक रास्ता भी दिखाती है। तो अरविंद जी, जाते जाते हमारे किसान साथियों के लिए आपका कोई एक संदेश जो आप उन्हें देना चाहें।
1: जी बिल्कुल सर, हम अपने किसान भाइयों को एक ही संदेश देते हैं कि वो रासायनिक खेती को अब छोड़ दें, क्योंकि उसके तमाम दुष्परिणाम सामने हैं, और उसकी जगह अब वो देसी गाय को परिवार का हिस्सा मानते हुए और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को शुरू करें।
0: अरविंद प्रताप जी आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: किसान भाइयों, अभी आप देशी गाय बेहतर आय विषय पर अरविंद प्रताप सिंह से अनेंद्र सिंह की बातचीत सुन रहे थे। अभी हमने रोजगार के अतिरिक्त साधन देसी गाय के विषय पर बात की। इसके साथ ही अगर हमें अपनी मिट्टी से भी अच्छी उपज लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से जहां तक हो सके बचें, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने की जगह घटती है, भूमि ऊसर होने लगती है। इसकी जगह पर अगर हम प्राकृतिक खाद जैसे कि केचुआ खाद का प्रयोग करें, तो केचुआ खाद जैसी प्राकृतिक खादें मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उर्वरक बनाए रखती हैं और उत्पादन अच्छा होता है। प्राकृतिक उत्पादों की बाजार में मांग ज्यादा है, कीमत अच्छी मिलती है। केचुआ खाद की अगर हम बात करें तो केचुआ खाद को बनाने के लिए सूखी छायादार जगह, जहां पर सीधी धूप ना आती हो और पानी ना रुकता हो, जमीन पर या पक्के टैंक में हम 10 से 15 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची गोबर की परत बनाएं। बेड को तैयार करने के बाद 10 किलो प्रति बेड के हिसाब से अच्छी नस्ल के केचुए इसमें डाल दें। नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करें। 10 से 15 दिन पुराने गोबर का उपयोग करें। 45 से 60 दिन में केचुए ऊपरी परत को भुरभुरी चाय की पत्ती जैसी खाद में बदल देते हैं। इसके बाद ऊपरी सतह को निकाल लें ताकि केचुए निचली सतह में चले जाएं और उसको खाद बनाने लगते हैं। बस छोटी सावधानियां बरतें, जैसे कि गोबर में कांच, पत्थर या प्लास्टिक ना हो, और बेड की चूहों, सांपों और चींटियों से सुरक्षा करें। बेड का तापमान कोशिश करें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, तो ये खाद के लिए ठीक रहेगा। तो किसान भाइयों, हम तो आपको यही सलाह देंगे, केचुआ खाद अपनाएं और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगाएं, फसल के अच्छे दाम पाएं, खुद भी समृद्ध बने और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। साथ में आनंद लें इस लोकगीत का, आज मेरे बालम संध्या शर्मा के स्वर में।

किसान भाइयों, आइए अब जान लेते हैं आगरा और उसके आसपास के मौसम का हाल। विगत 24 घंटों में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। सभी किसान भाइयों को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, काम से घर लौट आए होंगे और अपने दिन के इस बचे हुए समय का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, कितना अच्छा लगता है ना जब हम मेहनत करके घर वापस आते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, उनके पूरे दिन की दिनचर्या सुनते हैं, उन्हें अपने बारे में बताते हैं। साथियों, परिवार के साथ समय बिताना सुकून के पल है। लेकिन आपने कभी सोचा है हमें सुकून के पल देने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया? साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। बात है उस समय की जब भारत ब्रिटिश शासन के अंदर था। ब्रिटिश फौज में एक भारतीय ब्राह्मण सैनिक था। वो काम तो ब्रिटिश फौज के लिए करते थे, लेकिन फिर भी अपने देश के रीति रिवाजों और संस्कारों को भूले नहीं थे। रोजाना पूजा पाठ करना, सूर्य को जल अर्पण करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक समय की बात है, ब्रिटिश काल में एक नई राइफल जिसे इनफील्ड राइफल कहा गया, उसे फौज में शामिल किया और सैनिकों में ये खबर फैली कि उस राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है और उसे खोलने के लिए उसके कवर को अपने मुंह से खींचना होगा। जब ये बात उस ब्राह्मण सैनिक तक पहुंची तो उसने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और जब उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया तो उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए सामने खड़े अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। क्या ये कहानी आपने कहीं सुनी हुई है? जी हां साथियों, ये कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की। और ये कहानी शुरुआत करती है भारत के पहले क्रांतिकारी विद्रोह 1857 की महान क्रांति की। 1857 का महान विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, वो 10 मई यानी आज के दिन 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक और सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति, आर्थिक शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप और इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल के खिलाफ था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और तेजी से पूरे मध्य भारत, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार तक में फैल गया। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर हमारे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और उसी के बाद मुगल शाह जफर भी इस संग्राम में शामिल हो गए। इस संग्राम के अन्य प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी, नाना साहेब और तात्या टोपे जो कानपुर से लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ और कुंवर सिंह बिहार के शासन थे, वो सब इसमें शामिल हो गए। जी हां साथियों, 1857 की क्रांति यूं ही नहीं भड़की थी। इनफील्ड राइफल की चर्बी तो बस एक चिंगारी थी, बारूद तो पहले से ही भड़क रहा था।

इस विद्रोह के कई कारण थे। इस विद्रोह से पहले भारत के हर वर्ग में असंतोष फैला हुआ था। सैनिकों में गुस्सा था क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानी सिपाहियों को कम तनख्वाह देते थे, हिंदुस्तानी सिपाहियों को प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था और उन्हें लड़ने के लिए समंदर पार भेजा जाता था, जो उस समय धर्म भ्रष्ट होने की निशानी माना जाता था। और फिर आया इनफील्ड राइफल कारतूस, बस सब्र का बांध टूट गया। किसानों की बदहाली भी इसका एक बहुत प्रमुख कारण थी। अंग्रेजों ने लगान इतना बढ़ा दिया कि किसानों की कमर टूट गई, जमीनें नीलाम हो गई, सूखा पड़े या बाढ़ आए, लगान माफ नहीं होता था। किसान कर्ज में डूबा, महाजनों के चंगुल में फंसता जा रहा था। हल छोड़कर किसान मजदूरी करने को मजबूर हो चुका था। कारीगर और बुनकर भी बर्बाद हो चुके थे क्योंकि विलायती कपड़ा बिना टैक्स के हिंदुस्तान आने लगा था। ढाका की मलमल, बनारस की साड़ी सब बिकना बंद हो चुके थे। जुलाहों के हाथ से चरखे छिन चुके थे। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए थे। पेट की आग में भी बगावत ने घी डाला और राजाओं और नवाबों का अपमान हो रहा था क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद ली गई संतान को उत्तराधिकारी न मानने का कानून आ चुका था। और इस कानून के तहत झांसी, सतारा, नागपुर ये सारे राज्य बेटा होते हुए भी राज्य से छीन लिए गए। अवध के नवाब को बेइज्जत करके कलकत्ता भेज दिया गया। राजा महाराजा समझ गए थे कि आज पड़ोसी का राज छिना है, कल मेरा नंबर भी आ सकता है। जब सिपाही, किसान, कारीगर, राजा और आम जनता सबका दुख एक हो जाए तो क्रांति जन्म लेती है। इनफील्ड राइफल के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई और फिर पूरा हिंदुस्तान गूंज उठा। यही वजह थी कि 1857 को सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि जन विद्रोह कहा गया और इसी विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। साथियों, 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रांति को शुरू करने के लिए पहले कोई और तारीख तय की गई थी? और यही है हमारा आज का सवाल कि 1857 की क्रांति को शुरू करने के लिए पहले कौन सी तारीख तय हुई थी? आप ढूंढिए अपना जवाब। तब तक हम नमन करते हैं अपने भारत के वीरों को इस गीत के जरिए।

0: साथियों, आज मदर्स डे है, माँ को समर्पित एक दिन। महिलाओं की भूमिका इस समाज में कई रूपों में रही है। कभी वो माँ है, कभी बहन, कभी पत्नी, तो कभी दोस्त। समाज को बनाने में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आइए इसी विषय पर सुनते हैं ये वार्ता, बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका, और वार्ताकार है रीटा रॉय।
1: दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे होने से ही ये कायनात जवान है, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ। सुन ले ऐ दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ, और मुझे इस पर गर्व है, क्योंकि मैं घर भी संभालती हूँ, घर के बाहर भी संभालती हूँ, और हर रिश्ते को प्यार के धागे में पिरो कर रखती हूँ। तभी तो प्राचीन समय से ही हमारे समाज में महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। पौराणिक कथाओं में महिलाओं को पूजनीय एवं देवी माना गया है। ऐसा कहा भी तो जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उसी घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। यहाँ तक कि कोई भी परिवार, समाज या राष्ट्र तब तक सच्चे मायने में प्रगतिशील नहीं हो सकता है जब तक वहाँ महिलाओं के प्रति भेदभाव, निरादर अथवा अन्याय का त्याग नहीं होता है। पुराने समय में भारतीय महिलाओं को सम्मान एवं पूजनीय दृष्टि से देखा जाता था। सीता, सती सावित्री, अनुसुईया, गायत्री आदि अनेक नारियों ने अपना एक विशेष स्थान बनाया था। लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश पर अनेक आक्रमण हुए, जिससे कि भारतीय नारी की दशा में भी बदलाव आने लगे। समाज में उनका स्थान गिरने लगा और उनकी दशा बहुत चिंतनीय हो गई। उसे अबला के नाम से जाना जाने लगा और उसे असम्मान और हीन नजरों से देखा जाने लगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने महिलाओं की उस स्थिति को अपने कविता में बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया है कि अबला, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। जब बार बार हमारे

0: देश पर विदेशी आक्रमण हुए और उनसे समाज में कई तरह की कुरीतियां फैली, जिसने कि भारतीय महिलाओं को दीनहीन एवं कमजोर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे कि नारी के अधिकारों को खत्म करते हुए उन्हें पुरुषों पर निर्भर बना दिया, दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियां उसी समय की तो देन है। लेकिन उसी समय रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी आदि नारियों ने अपने अद्भुत साहस एवं मनोबल से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सोने के अक्षरों से लिख दिया। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि देश को आजादी दिलाने की लड़ाई में भी नारी के योगदान को क्या हम कभी भूल सकते हैं? लेकिन आज का युग परिवर्तन का युग है। भारतीय नारी की दशा में हम परिवर्तन देख सकते हैं। आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आज भी नारी अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। वो अपने प्रति हुए अन्याय का विरोध करती है। भारतीय कार्यबल में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला मजदूर वर्तमान में शोषित तो है ही, साथ ही महिला होने के नाते दोहरे शोषण का भी शिकार बनती है। जैसे कि गांव के नाबालिग लड़कियों को रोजगार का लालच दिखाकर उन्हें शहर लाया जाता है, जहां उन्हें बहुत ही कम वेतन पर घरों में या दूसरे कारोबारों में काम पर लगाया जाता है। मजदूर महिलाओं को आमतौर पर प्रसूति के बाद कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जबरदस्ती उनसे ओवरटाइम कराया जाता है, जरूरत पड़ने पर छुट्टी भी नहीं मिलती है, कई बार तो उन्हें पूरा वेतन भी नहीं मिलता है। लेकिन अब समय है कि महिलाएं अपने फैसले स्वयं लें, चाहे वो स्वयं, देश, परिवार या समाज किसी के लिए भी हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने के लिए तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी हथियार है कि वो पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान जरूर दे, ताकि वो भी अच्छी माँ बन सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। और केवल वो अच्छी माँ ही नहीं बनेगी, बल्कि वो होशियार, समझदार और आत्मविश्वास से भरी हुई एक कुशल गृहिणी भी बनेगी। और जब वो काम पर जाएगी तो वहां पर भी अपनी कार्य कुशलता से सबको प्रभावित कर देगी, और वहां कोई भी उसके अधिकार को नहीं छीन सकेगा, क्योंकि जब उसे अपना वेतन लेना होगा तो वो अंगूठे की जगह अपना नाम लिखेगी, कितने रुपए पर वो हस्ताक्षर कर रही है और कितना उसका मालिक उसे दे रहा है, वो ये सब अब जान सकेगी और वो अपने अधिकारों के प्रति और सजग होगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाकर वो सशक्त हो सकती है और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। जैसे कि यदि वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हों को छोड़कर धुआं रहित चूल्हा यानी कि गैस पर खाना पकाएगी तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी बहुत ही लाभकारी योजना है। निर्भया फंड के अंतर्गत उन महिलाओं को मदद मिलती है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उनको कृषि, बागवानी, सिलाई, कढ़ाई आदि हस्तशिल्प की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने आप को और ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। आर्थिक मदद करने के लिए महिलाओं को सरकार सस्ता लोन भी उपलब्ध कराती है, ताकि अगर वो अपना कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहती है तो उसे कोई भी परेशानी ना हो। तो निश्चित रूप से शिक्षित और जागरूक नारी अपने देश के नौनिहालों को वो आधार दे सकेंगी, जो कि एक मजबूत और उज्जवल भारत की संरचना कर सकेगी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया ये मशहूर वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है ना, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं जागे और महिला दिवस महिला सशक्तिकरण को सही मायने में सार्थक करें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका विषय पर, और वार्ताकार थी रीटा रॉय। साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्व

दिवस है। ये दिवस हर साल 10 मई यानी आज ही के दिन को मनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को ल्यूपस के बारे में जानकारी मिल सके। ल्यूपस एक दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित रोग है जिसे पहचानना अक्सर मुश्किल होता है। ल्यूपस त्वचा रोगों, जोड़ों, गुर्दे, फेफड़े, हृदय, रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे कभी कभी महान नकलची भी कहा जाता है। इसलिए ल्यूपस के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। साथियों, ल्यूपस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं या समय के साथ साथ आते जाते रह सकते हैं। और इसके सामान्य लक्षणों में शामिल है अत्यधिक थकान, जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती, जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न, गालों और नाक पर तितली के आकार के दाने आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना जो धूप में निकलने से और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, कभी कभी अस्पष्टीकृत बुखार आना जिसका कारण पता ही ना चले, बालों का पतला होना या जगह जगह से बालों का झड़ जाना, मुंह और नाक में छाले होना, गहरी सांस लेते वक्त सीने में दर्द होना, पैरों, टांगों या फिर आंखों के आसपास सूजन होना, ठंड या तनाव में उंगलियों या पैर की उंगलियों का सफेद या फिर नीला पड़ जाना या फिर कभी कभी उनका शून्य हो जाना। साथ ही ये सारे लक्षण ल्यूपस के हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये लक्षण है तो आपको ल्यूपस ही है, लेकिन खून की एक जांच से आप इस विषय का पता लगा सकते हैं। और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाने वाला एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। ये ल्यूपस, उसके लक्षणों, दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव और समय पर निदान तथा बेहतर देखभाल की आवश्यकता पर सभी का ध्यान केंद्रित करता है। ल्यूपस से पीड़ित लोग बाहर से तो स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन उन्हें थकान, दर्द, बार बार होने वाले दौरे और अंगों से संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जागरूकता परिवारों, कार्यस्थलों और समुदायों को अधिक समझदार और सहायक बनाने में मदद करती है। तो साथियों, जागरूक बने। और बताए गए अगर कोई भी लक्षण बार बार होते हैं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और अपना ल्यूपस का टेस्ट जरूर करवाएं। साथियों, आज मदर्स डे भी है। देखिए, वैसे तो मां के प्यार को धन्यवाद देने के लिए एक दिन काफी नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक दिन भी मां के प्यार के बिना बीतता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो बातें हम हर रोज अपनी मां से नहीं कह पाते, जो भावनाएं हम हर रोज उन्हें नहीं दिखा पाते, आज वो दिन है कि हम अपने दिल की सारी बातें अपनी माओ से कहें, उन्हें अपनी भावनाएं दिखाएं, उन्हें दिखाएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और हमारे जिंदगी में उनकी क्या महत्वता है। और वैसे भी हम कुछ बोलें या ना बोलें, माँ तो सब कुछ जानती है ना, क्योंकि वो एक माँ है।

साथियों, अब वक्त है आज पूछे गए सवाल के जवाब का। साथियों, सबसे पहले 1857 की क्रांति को 31 मई 1857 को शुरू करना तय किया गया था, लेकिन इनफील्ड राइफल की केस की वजह से और मंगल पांडे पर उस कारतूस को इस्तेमाल करने की वजह से ये क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई। जब मंगल पांडे ने पहली बार अपने अंग्रेज ऑफिसर को गोली मारी तो सिपाहियों ने विद्रोह छेड़ दिया। साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त है आपसे विदा लेने का, पर आप रखिए अपना ख्याल, जल्द होगी हमारी फिर मुलाकात। तब तक दीजिए अपने रेडियो साथी शालिनी भदौरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलकवित्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में ये मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना

0: में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:00 बजकर

रूपरेखा ही बदल दी। ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तित्वों में से एक श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं। आप एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े कुशल एवं ख्याति प्राप्त लेखक थे। आपने सदैव ही इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक मनुष्य को मानसिक क्रांति की आवश्यकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम संजीवम्मा था। उनके पिता जिद्दू नारायणिया ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जब कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे तभी इनकी माता संजीवम्मा का निधन हो गया। बचपन से ही इनमें कुछ असाधारणता थी। बालक कृष्णमूर्ति की गहरी आध्यात्मिकता को देखकर उस समय के प्रमुख थियोसोफिस्ट श्रीमती एनी बेसेंट ने यह स्वीकार किया कि बालक का भविष्य एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें दक्षिण भारत का ऋषि वैली स्कूल विशेष उल्लेखनीय है। भारत के इस महान व्यक्तित्व की 91 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1986 में मृत्यु हो गई। उनके साहित्य में सार्वजनिक वार्ताएं, प्रश्नोत्तर, परिचर्चाएं, साक्षात्कार, परस्पर संवाद, डायरी और उनका खुद का लेखन शामिल है। हिंदी भाषा में उनकी प्रमुख अनुवादित रचनाएं हैं शिक्षा और संवाद, ध्यान, विज्ञान एवं सृजनशीलता, स्कूलों के नाम पत्र, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी, प्रेम। कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार दर्शन वह है जो हमें साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करना सिखाता है। उनका मानना है कि शिक्षण संस्थानों से हमें दर्शन के नाम पर जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है वह मात्र विचारों एवं सिद्धांतों की व्याख्याएं होती हैं, जिनमें सत्य के वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता प्राय समाप्त हो जाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। सत्य तो स्वयं के भीतर छिपा है। कष्ट का संबंध शरीर से, जबकि दुख मानसिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा का अंत तो औषधि के सेवन से किया जा सकता है, परंतु मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरह से जानना होता है। भूत और भविष्य की स्मृति दुख का कारण होती है। कृष्णमूर्ति भय को मानव मन की गंभीर बीमारी मानते हैं, जो मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित करती है। भय का कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगिताएं और जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं होती हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान होने पर ही भय से मुक्ति संभव है। वे कहते हैं कि मृत्यु से इंसान भयभीत है और उसे यह पता ही नहीं कि जीने का अर्थ क्या है। उनका यह भी मानना है कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, शरीर की मृत्यु और मन की मृत्यु। शारीरिक मृत्यु एक अनिवार्य घटना है, जबकि मन की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है यथार्थवादी और स्पष्ट मार्ग पर चलना। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, जो उनके गहरे ध्यान, सही ज्ञान और श्रेष्ठ व्यवहार की उपज है, ने दुनिया के तमाम दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों को प्रभावित किया। उनका कहना था कि आपने जो कुछ भी परंपरा, देश और काल से जाना है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि नहीं, और आप अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि नहीं। कृष्णमूर्ति आंतरिक अनुशासन पर बल देते हैं। बाह्य अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। यह आप में अनुकूलता और नकल करने की प्रवृत्ति लाता है, परंतु यदि आप अवलोकन के द्वारा, सुनकर, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान करके, विचार के द्वारा अपने को अनुशासित रखते हैं, तो इससे व्यवस्था आती है। जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ स्वतंत्रता सदैव रहती है। यदि आप ऐसा करने में स्वतंत्र नहीं हैं, तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते। व्यवस्था ही अनुशासन है। जय कृष्णमूर्ति

0: अपने शैक्षिक विचारों के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी को यह उत्तरदायित्व सौंपते हैं कि वे एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जिसमें सभी मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक जी सकें, शांति और सुरक्षा में, हिंसा के बिना, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं। कृष्णमूर्ति पर प्रकृति का बहुत गहरा प्रभाव था। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और उसे नष्ट न करे। वे कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना और तथ्यों को कंठस्थ करना मात्र नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलरव को सुन सकें, आकाश को देख सकें, वृक्षों तथा पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सकें। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। वर्तमान शिक्षा विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मात्र व्यवसाय करना, ऊंची नौकरियां प्राप्त करना और सत्ता हथियाने का प्रयास करना है। वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है। जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति में मेधा का सदैव अभाव रहता है। जी कृष्णमूर्ति ने मौलिक दर्शन ने पारंपरिक गैर पारंपरिक विचारकों, दार्शनिकों, शीर्ष शासन संस्था प्रमुखों, भौतिक और मनोवैज्ञानिकों और सभी धर्म सत्य और यथार्थ परक जीवन में प्रवृत्त सुधीजनों को आकर्षित किया और उनकी स्पष्ट दृष्टि से सभी आलोकित हुए। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में विद्यालय स्थापित किए, जिनके बारे में उनका दृष्टि बोध था कि शिक्षा में केवल शास्त्रीय बौद्धिक कौशल ही नहीं, वरन मन मस्तिष्क को समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। जीवन यापन और तकनीकी कुशलता के अतिरिक्त जीने की कला कुशलता भी सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य की वैयक्तिक और सामाजिक चेतना दो विभिन्न चीजें नहीं। वे कहा करते थे कि पिंड में ही ब्रह्मांड है। उन्होंने बताया कि वास्तव में हमारी भीतर ही पूरी मानव जाति का पूरा विश्व प्रतिबिंबित है। उनकी दृष्टि मानव निर्मित सारे बंटवारों, दीवारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों से परे जाकर सनातन विचार के तल पर क्षणमात्र में जीने का बोध देती है। कृष्णमूर्ति ने धर्म, अध्याय, दर्शन, मनोविज्ञान व शिक्षा को अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से नए आयाम दिए, पर वे किसी के गुरु नहीं थे। अपने ही शब्दों में वे तो बस एक दर्पण थे जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। वे किसी समूह के नहीं, सच्चे अर्थों में समस्त मानवता के मित्र थे। उनकी वार्ताएं, संवाद व पत्र 8 से अधिक पुस्तकों में संग्रहित हैं। प्रत्येक पुस्तक ऐसे विषय को केंद्र बिंदु बनाती है जिसकी हमारे जीवन में विशिष्ट प्रासंगिकता तथा महत्व है।
1: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता की वार्ता। विषय था जे कृष्णमूर्ति का जीवन दर्शन। विविधा कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध क्या हो रहा है?
0: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी।

0: आकाशवाणी समाचार अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार

0: का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey guys, hey, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोता, इस कार्यक्रम में आज बात बहुत खास हम आपसे करेंगे। जी हाँ, आज मातृ दिवस है। एक माँ जो हमें अपने कोख में रखकर जन्म देती है और दूसरी माँ हमारी मातृभूमि जो हमारा पालन पोषण करती है। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, तो स्वीकार कीजिए रेखा शर्मा का नमस्कार। साथियों, संसार में यदि सबसे निस्वार्थ, पवित्र और सच्चा प्रेम किसी का होता है तो वो माँ का प्रेम होता है। एक बच्चा जन्म लेने से पहले मां के हृदय में अपनी जगह बना लेता है। वे अपनी संतान के लिए हर पीड़ा सहती है, हर कठिनाई का सामना करती है और जीवन भर उसके सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि मां के प्रेम को किसी एक दिन में बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मां तो स्वयं पूरी दुनिया है। श्रोतो, आजकल मातृ दिवस मनाने की परंपरा बहुत लोकप्रिय हो गई है। इस दिन लोग अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, उनके त्याग को याद करते हैं। ये भावना सच में बहुत सुंदर है, पर लेकिन क्या केवल एक दिन मां के लिए पर्याप्त हो सकता है? क्या मां का प्रेम केवल एक दिन याद करने योग्य है? नहीं, क्योंकि मां का प्रेम हर दिन, हर पल हमारे जीवन में मौजूद रहता है। मां का स्नेह किसी तारीख या अवसर का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। श्रोताओं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह बोलना, चलना या अपने भाव व्यक्त करना भी नहीं जानता। उस समय मां ही उसकी पहली शिक्षक, पहली मित्र और पहली संरक्षक बनती है। वे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है और सही गलत का अंतर समझाती है। रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी सहन नहीं कर सकती। वह स्वयं भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती। श्रोताओं, मां का प्रेम तो निस्वार्थ होता है। संसार के अधिकांश रिश्ते किसी न किसी अपेक्षा पर टिके होते हैं, लेकिन मां का रिश्ता केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। वे अपने बच्चों से कभी बदले में कुछ नहीं मांगती। उसकी खुशी केवल अपने बच्चों की खुशी में ही होती है, और जब बच्चा सफल होता है तो मां सबसे अधिक प्रसन्न होती है, और जब बच्चा दुखी होता है तो सबसे पहले मां की आंखें नम हो जाती हैं। श्रोताओं, मां की ममता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता।

जी हाँ श्रोताओ, सारे जमाने में माँ जैसा कोई नहीं होता। भारतीय संस्कृति में भी श्रोताओ, माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माँ को देवता समान मानो। ये केवल श्रोताओ एक वाक्य नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की आत्मा है। हर देश में माँ को त्याग, करुणा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि हम धरती को धरती माँ, भाषा को मातृभाषा और देश को भारत माता कहते हैं। श्रोताओ, माँ केवल जन्म देने वाली स्त्री नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। श्रोताओ, आज के आधुनिक युग में लोग अपने काम और व्यस्त जीवन में इतने उलझ गए हैं कि कई बार वे अपनी माँ के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर मातृ दिवस की शुभकामनाएं देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लेते हैं, जबकि सच्चा सम्मान केवल शब्दों या उपहारों से नहीं, बल्कि व्यवहार और संवेदनाओं से प्रकट होता है। माँ को सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब उसके बच्चे उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसका

सम्मान करते हैं। श्रोताओ, बुजुर्ग होती मां की सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों का साथ होती है। उन्हें उनसे महंगे उपहारों की नहीं होती, बल्कि प्रेम और अपनापन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन अपनी मां के प्रति प्रेम, आदर और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी बातों को महत्व देना चाहिए और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। श्रोता, मां जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है ना, तब भी मां का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। उसकी दुआओं में श्रोताओं इतनी शक्ति होती है कि वह अपने बच्चों की हर मुश्किल को आसान बना देती है। मां का आंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उसके स्पर्श में ऐसा सुकून होता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सुंदर एहसास है। वह घर की धड़कन होती है। उसकी मुस्कान से घर में खुशियां आती हैं। उसकी चिंता से पूरा परिवार प्रभावित होता है। मां के बिना जीवन अधूरा लगता है। वह हमारे जीवन की वह रोशनी है जो हर अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है। श्रोताओ, कहा भी जाता है कि शायद भगवान हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकते, इसीलिए मां को बनाया है। हमने भगवान की सूरत तो नहीं देखी, पर मां भगवान से कम नहीं होती।

श्रोतो, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों को जीवन देती है, उसी प्रकार मातृभूमि हमें पहचान, संस्कृति, भाषा और जीवन का आधार प्रदान करती है। इसलिए भारत की संस्कृति में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान मानी गई हैं। श्रोताओं, आज का दिन अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों और समर्पण को याद करने का भी दिन है। श्रोताओं, हमारी मातृभूमि भारत विविधताओं से भरा एक महान देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां होते हुए भी एकता में अनेकता की अद्भुत भावना दिखाई देती है। ये वही भूमि है जहां ऋषियों ने ज्ञान दिया, वीरों ने बलिदान दिया और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्रोताओं, भारत ने हमें केवल रहने की जगह नहीं दी, बल्कि हमें सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की भी स्वतंत्रता दी है। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखें। साथियों, मातृभूमि का ऋण कभी पूरी तरह से नहीं चुका सकते हम। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस समाज में हम पलते बढ़ते हैं, वह सब हमारी मातृभूमि की ही देन है। आज हम जो भी हैं, उसमें हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है श्रोताओं। इसलिए केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। एक सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश की उन्नति और सम्मान के लिए ईमानदारी से कार्य करे। साथियों, आज मातृ दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में योगदान देंगे, स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे, पर्यावरण की रक्षा करना, जल और बिजली की बचत करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और समाज में सद्भाव बनाए रखना भी देशभक्ति के ही रूप है। श्रोताओ, देश प्रेम केवल सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं है। एक विद्यार्थी का मन लगाकर पढ़ना, एक शिक्षक का ईमानदारी से शिक्षण कार्य करना, एक किसान का मेहनत से अन्न उगाना और एक डॉक्टर का सेवा भाव से कार्य करना भी राष्ट्र सेवा है। श्रोताओ, आज का युवा वर्ग देश का भविष्य है। यदि युवाओं में देश प्रेम, अनुशासन और नैतिकता की भावना होगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। श्रोताओ, हमें अपने इतिहास, संस्कृति और महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्तों ने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। श्रोताओ, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश सर्वोपरि है। मातृभूमि के प्रति श्रोताओ प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देना चाहिए।

यदि हम अपने समाज में ईमानदारी, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा दें तो ये भी देश सेवा ही होगी। श्रोतो, आज देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के बारे में सोचें। भ्रष्टाचार, हिंसा, जातिवाद और आपसी द्वेष जैसी बुराइयां देश को कमजोर करती हैं, इसलिए हमें इनसे दूर रहकर प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश फैलाना चाहिए। साथियों, मातृ दिवस भी हमें यही भी याद दिलाता है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है, उसी प्रकार मातृभूमि भी हर परिस्थिति में हमें सहारा देती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कठिन समय होता है, तब पूरा देश एक परिवार की तरह एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। श्रोताओं, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। माँ और मातृभूमि दोनों ही हमारे जीवन का आधार हैं। यदि हम अपने देश को मजबूत, शिक्षित, स्वच्छ और समृद्ध बनाएंगे, तभी सच्चे अर्थों में मातृ दिवस मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। आइए इस मातृ दिवस पर हम प्रण लें कि अपने देश की गरिमा, संस्कृति और एकता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और भारत को विश्व में सर्वोत्तम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे।

श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय स्टूडियो

श्रुतो बरसात फिल्म के लिए ये स्वर दिया था लता मंगेशकर ने, गीत के बोल थे रमेश शास्त्री के, संगीता शंकर जयकिशन का। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू, सुदेश भोसले और कविता कृष्णामूर्ति को। शब्द रचना है इंदिवर की, बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। फिल्म है आंखें।

श्रोताओ, ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म थी प्रोफेसर, गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म टक्कर से ये गीत। बोल है रानी मलिक के और तर्ज बनाई है अन्नू मलिक ने।

मोहम्मद रफी के स्वर में श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म जब प्यार किसी से होता है का गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत पद किया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों को, फिल्म है जवाब हम देंगे। गीत SH बिहारी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म जवाब हम देंगे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

0: नजर आ।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोताओं, अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर गा रही थी फिल्म लव इन टोक्यो का गीत। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म सीआईडी का गीत। गीत के बोल हैं मजरू के और संगीत है ओपी नैयर का।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी के गाए फिल्म ताजमहल के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग

0: पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत आठ क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग

0: लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर

0: बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. stresses on judicious use of imported petroleum products.

0: to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts two cabinet ministers and four state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
1: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
0: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्टर मोदी सेड ही विल लाइक टू अश्योर एवरी फैमिली इन तेलंगाना दैट सेंटर विल कंटिन्यू टू वर्क विद ग्रेटर स्पीड टू रियलाइज योर ड्रीम्स
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
0: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
0: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.

0: टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
0: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वजीर आजम ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
0: आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअसर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मबलकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मबलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मबलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: مرکزی

वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मुसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़ महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सेहत सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। यह बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकाम महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है, जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की, जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वीर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रे आजमी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल

के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तोसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए-ए-मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: In the National Programme of Features, you just heard a feature titled, Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushudha Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वॉज बॉर्न इंटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative technique

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ।

0: पहले हमने शत प्रतिशत एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।